0: बचाना करना क्या।
1: सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ने बेअंत बेअंत कृपा करदिया होया अमृत गुरबाणी सोर दहरा राज साहब जी की दात अरदास असीस रूप में हुक्मनामा साहब जी की दात बख्शिश की है। साध संगत जी 10 सितंबर परसों शहीद भाई सुखा सिंह शहीद भाई महताब सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा आ रहा है। 11 सितंबर बाबा बुढ़ा साहब जी की बरसी 12 सितंबर गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश गुरपुरब 13 सितंबर दिन एतवार गुरु अर्जुन देव महाराज जी का गुरगद्दी गुरपुरब आ रहा है। 14 सितंबर दिन सोमवार को गुरु रामदास साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब आ रहा है। इन्हां गुरपुरबां नूं समर्पित जिन्हां संगतां ने सुखमणी साहब जी के पाठ की सेवा अखंड पाठ साहिब सहज पाठ की सेवा सारा दिन देख जां लंगर की सेवा लैनी होवे दफ्तर दे नाल आप जी संपर्क कर सकते हो। इन्हां गुरपुरबां नूं समर्पित 11 सितंबर दिन शुक्रवार को श्री अखंड पाठ साहब जी प्रारंभ होंगे। 13 सितंबर दिन एतवार भोग पा के विशेष दीवान सजाए जाएंगे। संगत जी 11 सितंबर दिन शुक्रवार को इन्हां गुरपुरबां नूं समर्पित

दूसरा जेडे गुरमत दी रहणी मुताबक जीव के संसार तो चले गए कुर्बानियां कर गए सच ते विश्वास रखिया अटल निजम सिद्धांत रहिंदी दुनिया तक उजागर कर गए फिर उन्हां दा इतिहास सुनाया जांदा है ताँ कि साडा मन मन जाए उन्हां दे नक्शे कदमां ते चल के असीं वी सच ते पहरा दे के एक सिद्धांतक जीवन जीव सकीए और जन्म सफला कर सकीए उन्हां दे इतिहास सुनाए जांदे आओ एक बार सरबत संगत प्यार विच आखो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला गुरु प्यारे खालसा जीओ हिंदुस्तान दी धरती दे उत्ते बलि शब्द बड़ा पुराना है बलिदान शब्द बड़ा पुराना है पर शहीद लफ्ज जिहड़ा अरब देशां चों आया है इस तों पहलां गुरु अर्जन देव महाराज तों पहलां जिहड़े चार शहीद होए वह अरब देशां दे होए पहली बार हिंदुस्तानियां दी झोली शहीद लफ्ज गुरु अर्जन देव महाराज ने पाया असीं उहनां नूं शहीदां दे सरताज आखदे हां बलि देणी इहदे अर्थ ने नरमेद जग गजमेद जग असमेद जग बंदा वढ के बलि देनी हाथी वढ के बलि देनी घोड़ा वढ के बलि देनी इहदे अर्थ ने कि मारिया दूजा जाए खून ओहदा डुले ओहदे अवजाने विच जिहड़ा सुख मिलना वह मेरे घर च आ जाए पर शहादत की है जिहड़े फलसफे लई जिहड़े सिद्धांत लई कुरबानी करनी है खून अपना वहा देना जिंदगी अपनी ला देनी परिवार अपना वार देना पर जेडे सच दे सिद्धांत की खातर शहीदी पाईए वह सिद्धांत नूं सदा वास्ते अमर कर जाना उन्हूं शहादत आख्या जांदा है इस तों पहला शहीद लफ्ज हिंदुस्तानियां कोल नहीं सी यह लफ्ज है अरबी का अज सानू यह बगाना नहीं लगता उहदा कारण है जेडे अरब देशां च शहीद होए एक नालों दूजे का वक्फा सैकड़े सालों का हजार साल का है पर जदों गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने शहीद लफ्ज हिंदुस्तानियां दी झोली च पाया फिर हजारां साल उडीकना नहीं पिया फिर शहीदां दी जरनैली सड़क ते चलण वालियां दा मोढे नाल मोढा खह गया फिर इत्थे 90 साल दे बजुर्ग शहीद इत्थे दुध चुंग दे बच्चे मावां दीआं गोदां चों खोह के टोटे करके ते गलां च हार पाए गए इत्थे साडियां भैणां मातावां बच्चियां शहीद 4 साल दा बाबा बंदा सिंह बहादुर दा पुत्र अजय सिंह उहदा कालजा कढ के पिता दे मूंह च पाया गया कहना मैं ये चाहुंदा हाँ जदों गुरु अर्जन देव महाराज ने शहीदी दा संकल्प सानू दृढ़ करा दिता फिर हजारां साल नहीं डीकना पिया सैकड़े साल नहीं डीकना पिया अज तक भी शहीदां दी कतार इन्नी लंबी है आ तुहाडे गुरु घर दे चार चपेरे तुसां तस्वीरां लाईआं ने ये ते अजे कल दी गल है शहीदां दी कतार कदे मुक्की ना सानू मारन वाले मारदे मारदे उन्हां दा सिद्धांत मुक चलिया है उन्हां दा सिस्टम खत्म हो चलिया पर सिक्की सिद्धांत सदा अमर है क्योंकि यह निरभउ नाल जुड़िया होया है निरवैर नाल जुड़िया होया है ते एक ओंकार दा पुजारी है अकाल पुरख परमात्मा दा पुजारी है रहिंदी दुनिया तक इस आशे नूं इस सिद्धांत नूं इस फलसफे नूं कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती हाँ शहीदां दी कतार लंबी हो सकती है पर सिद्धांत कदे नहीं मुक सकता क्योंकि उहदे मद्दे नज़र गुरु महाराज ते उहनां दे परिवार ने शहादतां पाईआं ते अज भी गुरु दे लाल शहादतां पा रहे ने आओ ध्यान देना बिने कर रहा सां कल दे दीवान विच इतिहास की लड़ी इत्थे पहुंचीए कि बाबा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह 1100-1761 बिक्रमी सवेरे 10 बजे का समा है हकूमत का दरोगा आया कहण लगा मां जी इन्हां बच्चियां नूं तैयार करो अज सूबे सरहिंद वजीद खान के सामने इन्हां दी पेशी होनी माता गुजर कौर ने दोवां बच्चियां नूं तैयार किया है मैं कल भी अर्ज की सी तैयार केवल कपड़े पा के करना नहीं हुंदा एक बंदे नूं मानसिक तौर पर ऐसा मजबूत बना देना है हुण साडे घर छोटा जिहा बच्चा है वह बचपन तो लैके गुरबाणी पढ़दा है सिक्खी नाल जुड़िया होया है वड्डा हो के उहनूं संगत माड़ी भी मिल जाए पर उहदी आत्मा ते चढ़िया होया सिक्खी दा रंग कोई दुनिया की ताकत उतार नहीं सकती मैं कदे कदे वेहना है साडे कौम दे अंदर 2-4 बंदे अजकल सोशल मीडिया दा युग है वह कहिंदे कौम ने सानू की दिता गुरु दिया सिखा कौम ने तेनू की देना है तू कौम नू की दिता जिहड़ा बंदा कहिंदा है ना मैं सिक्खी छड्डी एक बार अकाली बाबा फूला सिंह दे वेले दी गल है एक नौजवान पतित हो गया अकाली बाबा फूला सिंह ने उहनू अपने कोल बुलाया कहिंदा भी प्यारे गुरसिखा
सिखी दे दायरे च आ जा। कहिंदा मेरा तुहाडे नाल लैणा देणा कोई नहीं, मैं सिक्खी छड्डी। ते उहने आख्या जिहड़ा अमृत गुरु कलगीधर पातशाह दा तेरे शरीर च गया, अमृत संचार होया है। अमृत छकाउण नूं कहिंदे अमृत संचार करना, संचार तेरे शरीर विच रच गया है। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਡੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰੰਗ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕੇ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਨਾ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੌ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਕੌਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ। 1100-1761 ਵਿਕਰਮੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਜਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬੀਏ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ।

तू करता है और एक कृत है और तू अपने कृत देच बैठा है, अपने कृत तो वक नहीं है, करता पुरख, पुरख कहते ना पूरे आया व्यापक, अपने कृत दे विच तो बैठा है, कृत तो अलग नहीं, जे अखा तेरिया कृत ने तो अख देच तो ही है, नक तेरी कृत है तो नक देच तो ही है, हाथ तेरी कृत है तो हथां देच तो ही है, पैर तेरी कृत है तो पैरां देच तो ही है, दिन तेरी कृत है तो दिन देच तो ही है, रात तेरी कृत है तो रात देच तो ही है, सूरज तेरी कृत है तो सूरज देच तो ही है। इसनों इस तरह लेना, सहस तो नैन नना नैन है तो एको, सहस मूरत नना एक तो ही, तेरी कोई अख नहीं सारिया अखा तेरिया ने, तेरी कोई मूरत नहीं सारिया मूरत जो है तेरिया ने, ये सब व्यापक है, सब सिलसिला जो है तेरा है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है बयान करा, खुदा ने मनुख नो आख्या जहां राज यक आब गिल आफरीदम, तो ईरान ता तार जंग आफरीदी। इस तरह के जेडे शायर कवि आंदे ना, जिवें कदी आसमान ते बिजली चमकदी है एवें एक छिण वास्ते, एक सैकंड वास्ते, कदी कदी इस तरह के शायर, इस तरह के कवि किसी वक्त एक लम्हे वास्ते, एक सैकंड वास्ते पूरे ब्रह्म ज्ञानी आते हैं, उस विच जदों इन्हां नूं ये झलक मिलती है, अगे पिछे नहीं आते। संत हो जो हर वक्त संत है, मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होई मिल गया विछड़दा नहीं, बूंद सागर विच मिल गई। इस तरह के शायर, इस तरह के कवि इतने गहरे, कदी कदी इन्हां नूं एक झलक मिलती है, इस तरह जिवें अंधेरे च कोई बिजली चमकी है, ते थोड़ा जिहा चानना हो गया, लिशकारा हो गया। इस वास्ते उस समय इन्हां दे आखे हुए जिहड़े बोल आउंदे ने ब्रह्म ज्ञानियां नाल मेल खा जांदे ने, महापुरशां नाल मेल खा जांदे ने। जैसे इकबाल कहिंदा है, दरमियाने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बाज में गोयन के दामन तरमकुन होशियार बास। ए प्रभु, तख्ते नाल तू मैनू पक्का बन के दरिया दे सुट दिता है, ते हुण तू मैनू ये कह रहे हैं भिजी भी ना ते किनारे ते लग जा, ते हुण किनारे ते लगना मेरी मर्जी है, ते भेजा ना हुण मेरी मर्जी है, तू ते बन के रख दिता मैनू। दरमियाने कारे दरिया तख्ता बदम करदा मी, बाज में गोयन के तामन तरम कुन होशियार बास। सब कुछ हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। इकबाल, सब कुछ हो रहा है, मैं तेरी कृत ते कृत देश तो बैठा है, हो रहे हैं मैं नहीं कर रहा, मैं हां ही नहीं। बाज में गोयन के दामन तरम कुन होशियार बास। सूफी संता ने भी इस मामले बहुत कुछ किया। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, इकबाल कहने ने जहां राज यक आब गिल आफरी दम, तू ईरान ता तार जंग आफरी दी। ए मनुख देख, मैं जमीन बनाई, दरिया बनाए, पहाड़ बनाए, ते जिथे जिथे तक तेरी पहुंच हुई तू वंड के रख दिता, किधरे अफगानिस्तान बना दिता, ईरान बना दिता, तातार बना दिता, टर्की तुर्की बना दिता, इन्हां मुल्कां दे उसने नाम लिखे ने अपने रदीफ काफी दी चाल दिच कविता दिच, ये तू की कीता, जमीन तू इस तरह वंडी क्यों, तू टुकड़े टुकड़े क्यों कीती। जहां राज यक आबो गिल आफरी दम, तू ईरान तातार जंग आफरी दी। मन राज यक फौलादे नाब आफरी दम, तू शमशीर तीरो तुफंग आफरी दी। मैं लोहा बनाया, तू बदूका बना लिया, तीर बना ले, तोपा बना लिया, ए तू की कीता। मैं लोहा इस

ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀਸਿਓ ਕਹੀਐਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਕਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੜੀ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਖਜੀਜਾ ਨੇ 3-4 ਕੰਬਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਲਿਟਾਇਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਪਿਓ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਪਾਲਿਆ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਖਦੀਜਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਚ, ਬਸਰਾ ਦੇ ਚ, ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਸਨ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੜੇ ਸਨ। ਮਾਲਕਿਨ ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚ ਬਦਲੇ। ਖਦੀਜਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ। ਖਦੀਜਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਫਾ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 14 ਮੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਸਾਊਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਨਲ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਟਨਲ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਵੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਧੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਘਰ, ਕੰਬੜੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ, ਕੰਬਲ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾਏ ਖਦੀਜਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੰਬੜੀ ਵੀ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਤਰੰਨੁਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਖਦੀਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਜ਼ਰਤ, ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਫੀਆ ਤੇ ਰਦੀਫ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਵੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਔਰ ਤਨੰਨਮ ਦੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਖਦੀਜਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਪਕੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਦੀਜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਬਹਿਰਸ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਦੀਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਪਕੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋਕੇ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ, ਨੀਲ ਕੰਠ ਨਰ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ।
मैं उत्थे कह बैठा, मैं कह शब्द ते दसवें पातशाह दा है जिहड़ा ब्लैक बोर्ड ते लिखे है, इस तो तुसी की सिखांदे हो? कहिंदे ने काव्य शैली नूं गुरु गोबिंद सिंह ने जन्म दिता है, इस शब्द दे राही असीं इह विद्यार्थियों नूं सिखांदे आ। मैं कह इहदे च की है, मैनूं दसो जरा, मैनूं भी पकड़ च नहीं है मेरी, मैनूं दसो। कहिंदे कि गुरु नानक देव जी जिस अखर नूं पहले वरतदे ने उस सारी पंक्ति विच ओह अखर पहले ही रहिंदा है। जिवें पहली पंक्ति ते अस्थाई है, प्रभु जो तोक है इलाज हमारी, हुण नन्ने नूं लैंदे ने। नीलकंठ, नीलकंठ एक शब्द है, नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी, एको शब्द है, नन्ना चलदा है। फिर पप्पा चलेगा, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी। फिर मम्मा चलेगा, माधव महाजोत, महाजोत एको शब्द है, माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। मैनू कहन लगे असीं इह काव्य शैली इस तों सिखदे आ। मैं कह धानो तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे शब्द नूं इस तरह पकड़िया ते है, साडी ते कख समझ च नहीं आया, साडे विच कई दसम ग्रंथ दी निंदा करन ते तुल पए, समझ कख नहीं आया, कुछ भी पता नहीं। कहिंदे ने उहदे त्रिया चरित्र है, एक मिनट जरा खामोशी नाल सुनना। त्रिया चित्र विच काम दियां बारीकियां नूं, उतार चढ़ाव नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्णन कीता है। क्यों कीता है? ऋषि वात्स्यायन ने पूरा एक ग्रंथ लिखिया, उहनूं काम सूत्र कहिंदे ने। लिखिया उसने सारा ग्रंथ राम ते नहीं लिखिया, प्रभु दे नाम ते नहीं लिखिया, काम ते लिखिया। सारा हिंदू समाज उसनूं ऋषि कहिंदा है, ऋषि वात्स्यायन। लिखिया उसने काम ते, उन्हें बड़ी प्रबल दलील दी है, हंकार ते बोलिया जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। लोभ ते बोलिया भी जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। क्रोध ते लिखिया भी जा सकता है, बोलिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। सिर्फ काम ते बोलना ते लिखना ये अश्लील हो गया, जिहड़ा सारी दुनिया नूं भ्रष्ट कर देंदा है। इस्त्री नूं इस्त्री नहीं रहण देंदा, गनका बना देंदा है। पुरुष नूं पुरुष नहीं रहण देंदा, बलात्कारी बना देंदा। इस दे उत्ते बोलना ते लिखना अश्लील किस तरह होया? ऋषि वात्स्यायन दी इस दलील दे समय उस समय दा समाज चुप कर गया सी, और वो ऋषि जान के पूजे गए, वो ऋषि जान के सत्कार रह गए। समाप्ति करा मैं। साडे विच जना खड़ा खड़ा हो जांदा है, नहीं जी है गुरु गोबिंद सिंह दी रचना नहीं, रचना नहीं, रचना नहीं। मैं अर्ज करा गुरु गोबिंद सिंह दी रचना तो चंगे चंगे सियाणे प्रेरणा लेंदे पए, कुछ सिखदे पए, कुछ सीखण दी कोशिश करो उन्हां दी रचना तो। ठीक है, पुराना इतिहास सतगुरां ने लिखिया है, इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं कीता, 26 अवतारां दी कथा है। और सतगुरु साफ लिखदे पए ने, दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना नाए प्रभ धरन युद्ध के चाहे। मैं ये सिर्फ टीका कीता है, मेरे अपने विचार नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह, मैं भाषा कीती है, तो गल खत्म हो गई। इल्जाम ते गुरु गोबिंद सिंह ते उंझ नहीं आउंदा, पर कीता की जाए, अकल नूं ताले ला दो ते गुरु गोबिंद सिंह दी हर दिन नूं खंडन करी जाओ। धुआंदार बोली जाओ जिन्हां नूं कख नहीं पता, सारी जिंदगी किसी होर पासे रोलदे ने, बुढ़ेपे जो है कौम नूं भ्रष्ट करन वास्ते गलत बोलनियां बोलन शुरू कर देंदे ने ते लिखना शुरू कर देंदे ने, जिहदे नाल आम समाज गलत फहमी च पै जांदा। खैर, मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, शांति निकेतन दे जो शब्द तों कविता बनाउण दी शैली, नवीं शैली, कहिंदे जी इस नूं जन्म गुरु गोबिंद सिंह ने दित्ता, असीं सिखदे हां, असीं सिखण दी जो है कोशिश पै करदे हां, असीं जाणन दी जो है कोशिश पै करदे हां। खैर, लमकावां ना, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने शब्द ओंकार, जैसे ओंकार दी धुन होई अनंत सूरज प्रगट होए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े और ओ धुंद पानी बन गए, सहजे सहजे ए अग दा गोला ठंडा होया, इहदा जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होके प्रगट होया वह पत्थर दे रूप दे प्रगट होया, आकार रूप दे पहला सी पत्थर। और सारी दुनिया च जितना पत्थर पूजिया जांदा इतना परमात्मा नहीं पूजिया जांदा, पता है क्यों?
जैन पत्थर पूजते ने, बौद्ध पत्थर पूजते ने, सनातन पत्थर पूजता है, ईसाई पत्थर पूजते ने, भावे मुसलमान आखन असी पत्थर दे पुजारी नहीं। संगे असवत जो थे पे खाना खुदा दे जद्दा दे कहने ने इब्राहिम तो आया, सीधा जन्नत तो आया, इब्राहिम नो प्राप्त होया, सीधा खुदा तो आया ए पत्थर। हुण इन्हां कोल कोई पुछे खुदा तो बिना भी किसी होर पासे भी कोई चीज आउंदी है? सब कुछ खुदा तो आया, पत्थर भी खुदा तो आया। जद ईसाई कहंदे ने ए हजरत ईसा खुदा दा इकलौता बेटा है, तो बाकी शैतान दी औलाद ने जो खुदा दा बेटा है, उन्होंने इंज कहना चाहिए हजरत ईसा खुदा दा लायक बेटा है, शरीफ बेटा है, नेक बेटा है, कोई हर्ज नहीं इसनु मनण दे। नेक पुत्र है, चंगा पुत्र है, नहीं जी इकलौता पुत्र है, बाकी कितों आए ने? फिर सारे उसे तो आए, सब उसे तो आए। कहने दा ढंग ईसाइयां नु जो है नहीं आया। गुस्ताखी जो है माफ, जितना पत्थर पूजिया जा रहा है, क्यों? आकार रूप दे परमात्मा जब प्रगट होया संसार दे पहले पत्थर दे रूप, और पत्थर ते परमात्मा दा स्वभाव एको ही है। परमात्मा नु भुख प्यास नहीं लगती, पत्थर नु भी नहीं लगती। परमात्मा नु दुख सुख नहीं व्यापदा, पत्थर नु भी नहीं व्यापदा। परमात्मा नु हजारां गालां कटो क्रोधी नहीं आउंदा, ते सारा दिन सजदा करी जाओ, उपमा करो करी जाओ, कोई फुल नहीं जांदा। जे सब मिलके आखण पाए, वड्डा ना होवे घाट ना जाए, सारा दिन पत्थर देखो मथा रगड़ो, वो कोई फुल नहीं जांदा। ते सारा दिन उस गालां कटो, वो कोई ढेरी ढा नहीं बैठदा। पत्थर दा स्वभाव परमात्मा वास्ते परमात्मा वर्गा है, फर्क सिर्फ इतना है पत्थर टोटली सुत्ता होया है, परमात्मा पूरा जा गया है, पूर्ण तौर ते चेतन है। हुण पत्थर जिस दिन पूरा जाग जाएगा ये परमात्मा हो जाएगा। सहजे सहजे प्रकृति, प्रकृति दे भी अर्थ किधरे नेचर ना समझ लेना, कुदरत आम कुदरत कर देने। संस्कृत दा शब्द है प्रकृत, प्रकृति, कृत तो पहले परमात्मा। इथे प्रकृति दे अर्थ परमात्मा बनता है, नेचर नहीं बनता, कुदरत नहीं बनता। कुदरत ते कृत है, कादर दी कृत है, पर प्राकृत कृत तो पहले उते परमात्मा है, उते करता है। प्रकृति उसका नियम, सहजे सहजे पत्थर नो मिट्टी ही बना, जिस शकल दे प्रगट कीता बनस्पति, ए दूजा पड़ाव सी, पत्थर ही बनस्पति बने। बनस्पति नु थोड़ी जिया प्यास लगती है, पानी चाहिए, क्यों? जागी है। पत्थर ते टोटली सुत्ता होया सी, जागे दियां लोड़ां आउंदियां, सुत्ते दियां लोड़ां नहीं आउंदियां। बनस्पति दी लोड़ पानी चाहिए, प्यास पैदा हो गई। हजारां लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति जिस शकल विच प्रगट होई, वो है पशु ते पक्षी। हुण निरे प्यास नहीं, भुख भी लगती है। निरे पानी नाल शेर नूं नहीं जिवाया जा सकदा, मांस भी चाहिदा है। निरा पानी नाल गऊ नूं नहीं जिवाया जा सकदा, घास भी चाहिदी है। प्यास भी लगदी है, भुख भी, आवाज भी आ गई, पशुआं कोल आवाज भी आ गई। लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद, मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हैं, ये पशु जिस शकल विच प्रगट होए ने, इहनूं कहिंदे ने मनुख। इहदा मन पशु नालों ज्यादा विकसित हो गया है, बनस्पति नालों ज्यादा जा गया है, इहदियां लोड़ां भी ज्यादा ने, जागिया जो ज्यादा है। पशु नालों इहदियां लोड़ां ज्यादा ने, पशु दी समाजिक जिंदगी नहीं है, पशु दी राजनीतिक जिंदगी नहीं है, पशु दी धार्मिक जिंदगी नहीं है, मनुख दी है। ज्यादा जागे, ज्यादा जागे, इहदियां समस्यावां भी ज्यादा ने। और इंज कह दईए सारे पशु सुखी ने, दुख विच केवल मनुख जी रहे, क्योंकि ज्यादा जा गया, इहनूं असलियत दा थोड़ा बहुत ज्यादा पता चल गया। पर जिवें बनस्पति ते पत्थर रस्ते विच ने, पशु भी रस्ते विच ने, मनुख भी अजे रस्ते विच है। मनुख दा परमात्मा होना बाकी है भाई। प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया। असी सारे दे सारे पड़ाव दे चां,
जितने चिर तक गोविंद नहीं हो गए रस्ते च ही। गोविंद किवें हो गए, प्रभु किवें हो गए। मैं अपने वक्ताओं नूं इत्थे समाप्त करना क्योंकि मैं 10 मिनट ज्यादा रह गया ते होर समय की मैं उलंघना नहीं करनी। थोड़े नेड़े दूजे गुरुद्वारा साहब दे 118 मैं 2 दिन हाजरी भरनी है 29 नूं 30 नूं। उदों मैं खोलण की कोशिश करांगा। प्रकृति ने पत्थर नूं बनस्पति बनाया, प्रकृति ने बनस्पति नूं पशु पक्षी बनाया, प्रकृति ने पशु पक्षी नूं मनुख बनाया। हुण प्रकृति मनुख नूं परमात्मा नहीं बनाएगी, मनुख स्वयं कोशिश करे। अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है, मनुख नूं स्वतंत्र छोड़ देता है। प्रकृति ने मनुख नूं स्वतंत्र कर देता है, कर्म लई स्वतंत्र। तुसी आखो नहीं ए वी बजे होया, फिर सत्संग करन दी लोड़ ही नहीं, कथा कीर्तन दी लोड़ ही नहीं, स्वतंत्र है। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। उदा ते खाना पीना भी बजे होया है, मनुख दा खाना पीना बजे होया ने। हजारां तरह दे पकवानां दा जन्मदाता है। सिर्फ भारत विच हजारां तरह दे खाने ने। बंगालियां दा खाना होर, गुजरातियां दा होर, तमिलनाडु महाराष्ट्र लोगां दा खाना होर, पंजाबियां दा होर, कश्मीरियां दा होर। चाइनीज फूड अलग है, यूरोपियन अलग है। दुनिया दे हजारां तरह दे खाने, क्यों? मनुख स्वतंत्र है। मैं एक दफा जींद दे च गऊ लै बैठा, खरीद बैठा, बड़ी खूबसूरत सी, चंगी लगी मैनू। हर साल मैं उत्थे धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ज्योति जोत समान पुरब ते जाना हुंदा। महापुरखां दा डेर है, ओ मनांदे ने। संत जीवन शाह सिंह जी दा डेर, ओ मेरे कोल पुछण लगे, सुनया तुसी गऊ खरीदी है? मैं क्या, जींद ते रोहतक एक गऊआं करके मशहूर है, अच्छियां अच्छियां गऊआं। मैं कहा मैनू बड़ी चंगी लगी है, मैं ले लई। ओ आ गए, कहण लगे मैनू दिखाओ। मैं कहा देखो, जींद शहर विच बड़ियां सरावां ने जो गऊआं नाल भरियां रहिंदियां ने। मैं चल के दिखाई, उन्होंने अपना हाथ सिर ते दे मारिया। कहण लगे ज्ञानी जी इहनू लैके जा रहे हो? मैं कहा क्यों, इहदे ठीक लक्षण नहीं ने, औखे होवोगे, दुखी होवोगे। इह सिर्फ दिसण नूं खूबसूरत है, बाकी ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थानू लक्षणा दा पता नहीं, सानू पता। जे तुसी गऊ लैनी है ते असी थानू लैके देंगे। ओ जिस वपारी कोल मैं लई जाके संतां ने उन्हों डांटिया भी मसकीन और इन्हू गऊ तक डंग दी देनी सी, ये की कीता है तू? ओ हाथ जोड़ के कहण लगा महाराज जी की करिए, इन्होंने आप ही पसंद की है, इन्होंने आप ही पसंद की थी। वो कहण लगे इन्हों लक्षणा का पता नहीं है। वाकई मैनू गऊ दे लक्षणा का पता नहीं सी। कुछ लक्षण ऐसे ने, दिस पैंदा इराकी घोड़ा है, वधिया घोड़ा है, ये वधिया गऊ है। लक्षण ही दस देंदे ने, ये जमीन वधिया है, धरती वधिया है, ऐसे खोजी मौजूद ने। अज ते विज्ञानक ढंग नाल खोज करदे ने, ये धरती बड़ी उपजाऊ है, बहुत वधिया है। लेकिन पुराने जमाने दे सूईए लक्षण देखदे सन। तो मैं अर्ज करा, मनुख धार्मिक है, धार्मिक मनुख दे कुछ लक्षण होंदे ने, ये भी मैं अर्ज करते। उन्हां लक्षणा तो पता चलता है धार्मिक है। मनुख संत है, भगत है, लक्षणा तो पता चलता है संत है, भगत है। ये लक्षण ते मैं बाद दे च बयान करांगा। पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये पावन पवित्र शब्द, वो कहिंदे ने मैं धर्म दे मार्ग ते चलिया ते हां अपने उत्ते लैंदे ने, मैं उस बच्चे दी तरह चलिया जिसने अज चलना सिखिया, ते जिस बच्चे ने अज ही चलना सिखिया वह कितना क चलेगा,
एक कदम दो कदम गिरेगा, गिरेगा, लाजमी गिरेगा। बच्चा लंबा पेंडा तय नहीं कर सकता। जैसे शरीरक तौर ते मनुख बच्चा होवे ते ओ बच्चा जिसने अज चलना सीखे कितना क चलेगा, एक कदम दो कदम गिरेगा, गिरेगा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द बड़े ध्यान नाल सुनना। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया सरवन ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु हे गुरु तू मेरी बांह पकड़, मेरी उंगल पकड़, मैं नहीं चल सकता, मैं तो गिरदा। वाकर दी लोड़ पैंदी छोटे मासूम बच्चे नु चलन वास्ते। मां बाप दी उंगल पकड़ के चलना सिखदा है। सतगुरु कहिंदे ने हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया, पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सीखे तो कितना क चलेगा, एक कदम दो कदम गिरेगा। धार्मिक तल ते किवें पहचान करोगे, चल भी रहे ते गिर भी रहे। सच बोले है चल पे है, झूठ बोले है गिर गया। अंदर दया दा वासा होया चले है, अंदर कठोरता दा वासा होया गिर गया। अंदर दान दी रुचि पैदा हुई है चल पे, अंदर बेईमानी दी रुचि हुई है गिर गया, गिर गया। अंदर नितनेम करण दा चाव पैदा होया चल पे, पर गंदा लिटरेचर गंदा साहित्य पढ़न दा चाव पैदा हो गया, गिर गया। हमेशा शरीर करके बच्चा बच्चा नहीं रहेंदा। धार्मिक तरते ते कई 70-80 साल तक भी बच्चे ही बने रहेंदे, कुछ भी नहीं, चलते ने गिरदे ने। सत्संग भी कर लेंदे ने, कुसंगत भी कर लेंदे ने, दान भी कर लेंदे ने, बेईमानी भी कर लेंदे ने, सच भी बोल लेंदे ने, झूठ भी बोल लेंदे। जीवन भर ऐसा चलता है। इस वास्ते ईरानी सूफी संत सादी ने ते साफ कह देता है, बुजुर्गी बा अकलस्त नके बा साल तवंगरी बा दिलस्त नके बा माल। बुजुर्गी उम्र करके नहीं है भई ये 70 साल का है, 80 साल का है, 90 साल का है। कहते उम्र करके बुजुर्गी नु ना नापो, अकल करके नापो। अकल कितनी है, समझ कितनी है। कई तन करके बुजुर्ग होंदे ने, अकल करके बच्चे ही होंदे ने। बच्चियां दी गल करदे बिल्कुल बचपना होंदा है। इस तो उल्ट भी हो सकता है। कई शरीर करके ते बच्चे होंदे ने, अकल करके बुजुर्ग होंदे ने। शरीर करके ते 5.5 वर्यां दे ने धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जिस दिन गुरगद्दी ते बैठे ने, अकल करके 100 साल देने बुजुर्ग ने, महान ने। शरीर करके जो दीवारां दे चिने जा रहे ने मासूम बच्चे ने, मासूम बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने, बुजुर्ग ने। इस तो उल्ट भी है। शरीर करके ते बुजुर्ग ने 70 साल 80 साल हो गए, अकल करके निरे ही बच्चे दे बच्चे ने। मैं कैलीफोर्निया दे कई गुरुद्वारे च देखे 70-80 साल दे बुढ़े 10-11 बजे आ जाते हैं गुरुद्वारे, दिन भर ताश खेडते हैं कई गुरुद्वारे च, गप्पा मारते हैं, निंदा उस्तत करते हैं। फिर जो संध्या होने लगती है, रहराज साहब का पाठ शुरू होता है, कथा कीर्तन का वेला, भजते ने इंज जिवें बिच्छू कटेगा, भजते ने। हुण गुरुद्वारे का नाम है की लिया, मैनू कहना पिया एक नू जद जान लगे, मैं कह 3 जथियां का कीर्तन है अज। एक जथा दरबार साहब तो आया,
दो होर वड्डे जथे दिल्ली तो आए ने, ते मैं कथा भी करनी है। रुक जाओ, कहिंदे इत्थे हुंदा ही रहिंदा, इत्थे होर की होना, इत्थे हुंदा ही रहिंदा। तो उत्थे मैनूं कहना पिया, ये उम्र करके बुजुर्ग ने, अकल करके बच्चे ने, अकल करके बच्चे। गुरु हरकृष्ण जी महाराज तन करके शरीर करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। कलगी धर दे लाडले तन करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। 7 साल दा प्रहलाद बुजुर्ग है, 60 वरिया दा हरनाकश बच्चा है। प्रहलाद नूं कहिंदा है, तू जपया कर जल हरनाकश थर हरनाकश, जब तू जपेगा ते तेनों देख के बाकी बच्चे भी जपनगे। ते 7 वरिया दा प्रहलाद कहिंदा है, बापू की बच्चियां वाली गल कर दे हो, जल है राम थल है राम। 7 साल का बच्चा बुजुर्गों वाली गल करता है, और 60 साल का बुढ़ा बच्चियां वाली गल करता है। बच्चियां दे कदी कदाई कोई बुजुर्ग होंदे ने, बुढ़िया दे बहुते ते बच्चे ही होंदे ने। गुस्ताखी मर बच्चे ही होंदे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिंदगी एवें गवाई जांदे ने। ताश खेडदे होया नो एक सज्जन ने पूछ लिया, की कर रहे हो? समा पास पै कर दे। फिर मेनू विचकार बोलना पे, समा रहा भी है, तुसी ते आखरी दहाने ते बैठे हो, समा रहा भी है, समय नू सफल करो जिहड़ा थोड़ा बहुत रह गया। आजू समझ कच बिगड़े हो ना ही, बजले नाम मोरा। अजे भी कुछ नहीं बिगड़े, तो संभाल कर ले, पर नहीं अकल नहीं इतने। शेख सादी कहंदे ने, बुजुर्गी बा अकल अस्त, नखे बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त, नखे बा माल। अमीरी माल असबाब तो ना ना पोए दे कोले, इतने मकान ने, इतनिया महल माड़िया ने, इतना कारोबार है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी धन संपदा है। शेख सादी कहंदे ने, यह अमीरी दी निशानी नहीं, दिल कितना वड्डा है। इस तो पता चलेगा शूम है कि अमीर है, गरीब है कि अमीर है। दिल तो नापो। मुहम्मद साहब के निकटवर्ती हजरत उमर ये बसरा तो बगदाद जा रहे सन, उठते रस्ते दोपहर हुई, नखलिस्तान उसनों कहने जिते 4-5 दरख्त होवन, थोड़ा जिहा पानी होवे सरोवर, उन्हों नखलिस्तान कहते हैं। अरब देशां विच आखिर उसकी बहुत महानता होती है। उत्थे रुके आराम करन, ऊठ नूं दरख्त नाल बने है, पानी नाल मूँह धोता है। एक नान कोल सी रोटी, खोल के जैसे खान लगे कि भिखारी आ गया। भिखारी नहीं सी, पर चूंकि मंगदा पिया सी, इस वास्ते मंगता। उन्हें आखिया, हजरत मैं 3 दिन का भुखा। कूत शहर दे च मैं जाना है, अजे बहुत दूर है, मैं भुखा पहुंच भी सकांगा कि नहीं, पैदल हाँ, तुहाडे कोल उठ है। बेहतर होवेगा इस नान दा चौथा भाग मैनू दे दो, चौथा हिस्सा, मेरी थोड़ी भुख मिट जाएगी, मैं चल पवांगा। हजरत उमर ने सारा नान ही दे दिता, ले। पर ओ भी समझदार बंदा सी, कहन लगा, नहीं तुसी भुखे जाओ, मेरा हिरदा ए भी कबूल करन नू तैयार रहे, मैनू इसका चौथा भाग दे दो। पता है हजरत उमर ने की आख्या, तू 3 दिन का भुखा, मैं अधे दिन का भुखा,
मेरे ते नान खाना हराम है। ऐ लै तू उस मनुख ने आखिया पहली दफा एक अमीर मनुख देखे है। अमीर मनुख दोपहर दा वक्त सी। महात्मा बुद्ध एक पिंड तो दूसरे पिंड जा रहे ने। नाल चेला है आनंद जो रिश्ते दे चचेरा बिरा सी चेला बन गया सी नाल सी। उन्हें करमंडल पानी दा नाल भर लिया भई दोपहर दा वक्त बिहार दी गर्मी। आखिर दो को दा पिंड है चार मील दा पिंड है। अजे अद्धी वाट तय होई होवेगी। महात्मा बुद्ध ने आख्या आनंद तू नाल पानी लेंदा है। हां लेंदा दे करमंडल दे दिता सारे दा सारा एक बूटे च पा दिता। आनंद कहिंदा भगवान सानू प्यास लग सकती है अजे ते रस्ता बहुत रहिंदा है। अद्धी वाट तय हुई है सानू भी प्यास लग सकती है तुसी सारा पानी दे दिता। महात्मा बुद्ध ने आख्या सानू प्यास लग सकती है ये प्यास तो मर रहा सी। साडे कोल करमंडल पानी होवे आनंद मैं किसे नू प्यास तो मरदा नहीं देख सकता। हां पानी नहीं सी गलवक इसनू पता है। विद्वान की कहंदे हुंदे ने सतगुरां ने दसवंध दी मर्यादा बनाई है। एक मनुख कोल 10 करोड़ रुपए ने ते एक दे कोल सिर्फ 10 ने। एक ने 1 रुपया दसवंध कढ़िया दान कीता है। एक ने 1 करोड़ कीता है बराबर ने। इस चक्कर च ना पैना जिन्हें करोड़ दान कीता है महान दानी है कख नहीं दाने। उहदा 1 रुपया उस करोड़ तो घट नहीं है। उहदी कुल संपदा ही 10 रुपए सी। एक करमंडल पानी दा ही सी उहदे कोल। महात्मा बुद्ध कोल होर कुछ भी नहीं सी दे दिता। मोगरे में मनते तनते धन लो सिर है सब ही नहीं को। कलगीधर पातशाह कहिंदे ने मेरे घर दे जतन करके मन करके धन करके जो कुछ भी है सब जगत दा सब खालसे दा अपना कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। अमीरी माल असबाब तो नहीं है। एदे कोल इतनियां महल माड़ियां ने एदा इतना बैंक बैलेंस है एदे कोल इतनी धन संपदा है। अमीरी नापी जांदी है दिल तो। अगर दिल दे च बिराह वास्ते भी थां कोई नहीं प्यो वास्ते भी थां कोई नहीं मां वास्ते भी थां कोई नहीं तो इनू अमीर आखोगे महाशोम मनुख कुछ भी नहीं गरीब मनुख। लक्षण दसदे ने स्वभाव दसदा है तरजे जिंदगी दसदी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया। हे प्रभु मेरी उंगल पकड़ मैं नहीं चल सकता। मैं तेरे रस्ते ते चलते पिया पर उस बच्चे दी तरह जिन्हें अज चलना सीखे है ते जिस बच्चे ने अज कदम पुटे ने कितने क पुटेगा। गुजरात दे इलाके च मैं देखा है जिस दिन बच्चा पहला कदम पुटे ना ते ओ घर दे शगन मनांदे ने लड्डू वंडदे ने नचदे ने खुशियां मनांदे बच्चे नू चलना आ गया। फिर जिस दिन बच्चा जबान खोलन लग पैंदा पहला बोल बोलदा है फिर खुशी मनांदे ने फिर ओ अपना इसनू अपने ढंग नाल मिठाइयां बना के वंडदे ने पड़ोसियां नू बुला के रिश्तेदारां नू बुला के साडा बच्चा बोलन लग पिया है ओदी जबान चो बोल निकले। 4-5 साल दा बच्चा हो जाए ते बोले ना मां बाप नू चिंता हो जाती समझ नहीं आउंदी बोलदा नहीं पे। 3 साल दा बच्चा हो जाए कदम ना पुटे खड़ा ना होवे मां बाप नू चिंता हो जाती पता नहीं गल की है कदम ही नहीं पुटदा खड़ा ही नहीं होंदा।
महाराज कहते हैं हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते, पर उस बच्चे की तरह जिसने अज कदम पुटे है, जिदा ध्यान थोड़ा जहां भी शब्द की तरफ गुरु की तरफ चले है, समझ लो उसने कदम पुटे है। तो जिदा ध्यान ही नहीं चलिया, सुरत शब्द का मेले, सुरत ध्यान नू कहंदे ने, सुरत शब्द की तरफ गई है कि नहीं, पाठ कर रहे है सुरत उदे च है कि नहीं, सुरत स्रोत नू भी कहंदे ने, सुनन नू भी कहंदे ने। सुरत दे तीन अर्थ ने, चलो मैं ये भी दोहरा दिया, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ये सुरत दे च है, सुन रहा है, तो जे सुरत दे च है तो सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी, तो जे सुरत आ गई है तो सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। पर पहले तो सुनना है, पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, सुनता तो है नहीं पिया, अजे ध्यान नहीं चले, अजे बच्चे की तरह है, जन्म तो इसका हो गया है, चलना कोई नहीं है देखो। तो मैं फिर अर्ज करा, तीन साल हो जान बच्चा चले ना, मां बाप नू चिंता हो जाती है, पंजा साठ साल हो गए ध्यान शब्द की तरफ चलिया ही नहीं, गुरु नू भी चिंता हो जाती है कि हो गया इसनों, क्यों नहीं चलता। मैं अर्ज करा, घट लोगों की सुरत शब्द की तरफ चलती है। इस वास्ते पढ़न दे नालों, गुरबाणी पढ़न दे नालों, सुनना लखा गुणा औखा है, बिना सुरत तो सुन ही नहीं सकेगा, नहीं सुन सकेगा, पर बिना सुरत तो पढ़ सकेगा, भटकी हुई सुरत नाल, भटके हुए ध्यान नाल भी पढ़ सकता है। पढ़न वास्ते ध्यान बार करना पैंदा है, नजरां भी बार करनिया पैंदियां, सुनन वास्ते ते शायद अखां भी बंद करनियां पैन, और ध्यान नू अंतरमुखी करेगा ता ही सुन सकेगा, वरना नहीं सुन सकता। ये भी मैं अर्ज करा, एक मनुख उची उची बोल रहा हुंदा है, दूजा सुन रहा हुंदा है, सुनन वाला फिर कह देंदा है, एक दफा फिर आख मैं नहीं सुनिया, तू क्यों नहीं सुनिया, कहिंदा मेरा ध्यान किसे और पासे चला गया, जिहदा मतलब ध्यान शब्द दे च नहीं, पाठ कर रहे है ध्यान नहीं है, अजे इनू चलना नहीं आया, नहीं आया। समाज सुधारकां ने, राजनैतिक लोगों ने जो मनुखी समस्यावां दा समाधान पेश कीता, उहदे नाल वक्ती तौर ते ते सिलसिला ठीक, लेकिन मन दियां बेचैनियां दूर नहीं होईयां। हर मुल्क बेचैन है, हर मुल्क परेशान है, हर मुल्क चिंता तो है। समाज सुधारकां ने ते राजनैतिक लोगों ने जो समाधान पेश कीते, इहदे नाल मनुख दी समाधि ते लगी ना, आनंद ते मिलिया ना। अवतारी पुरशां ने जो समाधान पेश कीते, लोगों ने कबूल ना कीता। किहड़े अवतारी पुरश नू लोगों ने कबूल कीता है? किसी नू तत्ती तवी ते बिठाया, किसी नू जेल दे च पाया, किसी दे बंद बंद कटे ने, किसी नू सूली ते लटकाया, किसी नू बनवास भेज दिता, किहड़े अवतारी पुरश नू वक्त दे लोगां ने कबूल कीता? नहीं कबूल कीता। भगतां नू भी नहीं कबूल कीता। कबीर दे उत्ते बड़े वड्डे तीन इल्जाम लगे ने, कतल दा इल्जाम लग्या, जेल भी भोगनी पई, चोरी का इल्जाम लग्या, सिकंदर लोधी ने अंदर पाया, दुराचार का भी इल्जाम लगे, केड़ा इल्जाम नहीं लगे। ईर खालुआ ने सोचिया उंज ते पकड़िया नहीं जाएगा, कोई ऐसी व्यौंत बनाई अंदर ही जाए, एदा बाहर होना ठीक नहीं, हद हो गई। समाज सुधारक ते राजनैतिक मनुख दियां मानसिक समस्यावां दा समाधान पेश ना कर सके, बनी हुई है समस्या। हर मुल्क दे समाज सुधारक ते राजनीति मौजूद है, पर बेचैनी मौजूद है, परेशानी मौजूद है, चिंता मौजूद है। संत जना ने, भगत जना ने, अवतारा ने जो मानसिक समस्यावां दा समाधान पेश कीता, वो मनुख ने कबूल नहीं कीता, परवान नहीं कीता।
तो समस्या त्यों दी त्यों बनी हुई है, हजारां साल तो बनी हुई है और रोज रोज मनुखता दे तल ते बेचैनी परेशानी वधदी जा रही है, घटदी नहीं पई। मन दी समस्यावां दा समाधान की है? महाराज कहिंदे ने धर्म। इहदे नाल मन दी समाधि लगेगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा, महारस की प्राप्ति हो जाएगी, महाखेड़े ते खुशी की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म की है जो निर्मल कर्म ते खड़ा है, ते निर्मल कर्म की है हर को नाम जप, निर्मल कर्म, बस ऐ निर्मल कर्म। कल मैं अर्ज की थी से मनुखां दी सारी गति हलचल बोल चाल नाल कायम है, शब्दां दे कायम है, शब्दां दी बड़ी महिमा है, बोलां दी बड़ी महिमा है। दो कौड़े बोल बोले ने अगला सारी रात तड़पदा रह गया, हुण उहनूं कोई आखे ना तैनूं कोई सूआ लगे ना तीर लगे ना गोली लगी है, एवें तड़पी जा रहे। दो बोलां ने तड़पा के रख दिता, दो बचना ने तड़पा के रख दिता, पर दो मिठे बोल तड़प दे दिल नो शांति भी दे सकते। प्रभु दा नाम एक बोल है, बोल नो संस्कृत विच मंत्र कहंदे ने, शब्द कहंदे, शब्द मंत्र बोल वाक एको ही गल है। गुरु दा वाक, गुरु दा शब्द, गुरु दा बोल, गुरु दी आवाज, गुरु दा मंत्र। मैनू चंगी तरह याद है अजे भी पंजाब दे कुछ पिंडां च आवाजा लो गुरु दा वाक नो, हुक्मनामे नो इंज कहिंदा, गुरु दा आवाजा लो। इधर फ्रंटियर लहिंदा पंजाब जो पाकिस्तान दे चला गया, आउणा ते ग्रंथी साहब नू कहिंदे सन गुरु दा बोल सुना दो, हुक्मनामा सुना दो। पंजाबी च बोल कह देंदे ने, वाक कह देंदे ने, संस्कृत दे शब्द कह देंदे ने, मंत्र कह देंदे ने, गुरु मंत्र, गुरु शब्द, गुरु दा बोल, गुरु दा वाक। उस वाक नू बार बार जबान दोहरावे ते मन सुने, मन दे चों दुख निकल दे जांदे ने, पाप निकल जे जांदे ने, और एक दिन वो मंत्र सिद्ध हो जांदा है। कहिंदे ने वाक सिद्ध हो गए, मंत्र सिद्ध हो गए, बोल सिद्ध हो गए, शब्द सिद्धि इस नू मिल गई। तो कल दे बोल मैं थानू दोहरावा, जद बोलन दा मन दे ख्याल आउंदा है, उरना आउंदा है, पवन नाभी नाल टकरांदी, नाभ खुलदी है, नाभी खुलदी है, उत्थों धुन उठदी है, इस वासे नाभी नू धुन ही कहिंदे। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੁਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁਨ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਗਾ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਧੇ ਤੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੀ, ਅੰਧਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੋ ਖਾਏਗਾ ਕੀ?
ਇਹਤੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੱਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਕੰਨ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਨਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਛਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਆਖਿਰ ਭੋਜਨ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਮਾਸ ਬਣਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਜ ਮਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਬੰਨਣ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਬੋਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜੈਸੇ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛਕਣਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘਾਣੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕੀ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਛੇ ਤੇ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਛੱਕ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੋਮਿਟ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਈਰਖਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, 4 ਦਿਨ ਨਾਮ ਕੀ ਜਪੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਈ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਛੇ, ਪੁੰਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰੂ, ਪਚਾਵੇ ਵੀ ਸਹੀ, ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪਦਿਆਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 2-4 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਤੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਤੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆਪ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਸੀ। ਹਸਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 7-8 ਵਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਜਰ ਦੀ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ, ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਜਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਬੱਚਾ ਆਖਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਅਸਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਜਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਗਏ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਉਸਨੇ ਨਮਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਾ ਅਸਰ ਮਗਰਬ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਰਸ ਬੜਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੋਟੇ ਨਾ। ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨਾਨਾ ਤੇ ਦੋਤਾ। ਇਹ ਅਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਖੁਦਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੂੜ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂਰਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਜ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
आ चल के फिर पड़ी है। तू अपनी भी कजा की थी, मेरी भी कजा की। इस तरह मैं देखना चार

कबहू ना सिमरियो नाम। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो। एहे पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। अपनी भेद आप जनावो। हर जन मंगल गावो विसर नाही कबहू ही ते।

पात सत्रह सहस्रपणिज्य अर्ध सहस्रपुण तीन किहिज भाद्रव सुधि अष्टमी रविवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए।

मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक ना जानियो श्री असपान।

सारना अंगीकार वो हो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम दिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दी आए वडियाई आ कह नानक सुनो संता हो सब धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुहर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बेना देह न माणी देह न माणी लिवै बज हो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया एस नौ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुरते जानिया।

0: Why good why good why good why.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

पौड़ी सतगुरु विट्ठल वारिया जित मरेख समसमालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिए ने नेत्र जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सिवन जा रहा सतगुरु बोझ था विरले।

दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया।

रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत केहे, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमतोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गिण जय त्रिपवन महेप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कृपा करो दीन के दाते।

अहंस सहज स्वभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तो दृठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दावे साहो।

बहादुर शाह जफर दा एक बड़ा कीमती शेर है। वो कहिंदे, जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैजो जका। जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। कहिंदा उसनू मनुख कहण दी लोड़ की है। सुख दे खुदा नू भुल गया, दुख दे खुदा नू भुल गया। इनू मनुख कहण दी की लोड़ है, इनू बंदा कहण दी की लोड़ है। ये हिंदुस्तान दा आखरी मुगल बादशाह सी, आखरी, जिस विचारे दी मौत रंगून दी जेल दे चोई। अंग्रेजां ने पकड़ के इसनू रंगून दी जेल दे बंद कीता। बहुत सारे इतिहासकार ते दार्शनिक इंज कहिंदे ने, इहदी जल्दी हार दा कारण भी यही सी कि फकीर तबीयत सी। ये अंतरमुखी हुंदा जा रहे, असी बारों संबंध टुटदे जा रहे सन। इहदी हार दा कारण भी यही, नहीं तो बहुत वड्डी बादशाहत सी, बड़ी सल्तनत सी, बड़ी सेना सी, बड़ी फौज सी, बड़ा कुछ कर सकदा सी, पर तबीयत फकीराना हो गई सी। कहिंदा है, साफ कह रहे है, जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, बंदा कहण दी लोड़ ही नहीं है, मनुख है कहण दी लोड़ ही नहीं। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो कितना ही आलम फैजो जका। जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। फकीर तबीयत ए इंसान से महापुरुषों च खूबी है, एक कमजोरियां कबूल कर देने, अपनिया कमजोरियां कबूल कर देना, मन देने। दूसरा अपने आप न छुपा देने। भाई गुरदास और भाई साहब भाई वीर सिंह बड़े कीमती बोलने भाई वीर सिंह दे, मेरे छुपे रहन दी चाह, मैं तो छुप जाना चाहना। जब बीज मिटदा है तो दरख्त बनता है, फल बनता है, मैं तो छुप जाना चाहना, मैं तो मिट जाना चाहना। मिटण दे खुशी किसी नूं दिसे तो समझ लेना कोई संत है, कोई रब दा प्यारा है, कोई रब दे मार्ग ते चल रहा है। एकाग्रता बख्शनी, मेरे छुपे रहण दी इच्छा। मन भटक रहा है, संत कवि कहिंदा समय च भटक रहा है, वक्त दे च भटक रहा है। बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। थोड़ी जिही एकाग्रता बख्शनी। बचपन तो गुरु ने मैनू भी एक कवि हिरदा दिता सी, मैं पंजाबी ब्रिज भाषा उर्दू दे काफी रुबाइयां लिखियां ने। भाई वीर सिंह जी दी इस रुबाई नू जद मैं पढ़िया, बीत गई दी याद पई हड्डां नू खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नू तड़फावे। दो रुबाइयां उदों मैं लिखियां, एक पंजाबी दी एक उर्दू दी, थोड़े सामने रखदे हां। कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं। कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं। जीना अभी नहीं आया, क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान हुण इस वक्त। इसनों मैं पंजाबी रूप इंज दिता, माजी दियां यादां बस सागर दियां छलां, माजी दियां यादां बस सागर दियां छलां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां। जीवन मैं सिखिया अज दे कोलों, अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। अज वर्तमान हुण वर्तमान। भाई गुरदास कहिंदे ने, वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाणा। किथे मन भटकदा, कदी किसे कोल ना पुछना,
ਜੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਦਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਣ ਹਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਨਾ ਭਵਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ, ਨਾ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਤਨਾ ਕਹਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਸਨੂੰ। ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਤ ਅੱਜ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕਹਿ? ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕਦਮ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕਦਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਵਰਤਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਇੱਕ ਦਮ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੀਏ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਮ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੇਲੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਖਾਦਮ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਖਾਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਆਦੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰਾ। ਮਰਦਾਨਿਆ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਦਮ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ 100 ਦਮ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ,
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 100 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 10 ਦਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, 10 ਦਮ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ? ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟਕਾ ਅਲੰਕਾਰ, ਉੱਠ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਠ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟਕਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ 100 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਆ ਇੱਕ ਦਮੇ, ਮੌਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਨਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਮੰਤਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਮ ਇੱਕਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਮ ਇੱਕਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ। ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਂਮੰਤਰ ਨੇ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕਦਮ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਰਕ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਣ ਇੱਕ ਛਿੰਨ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਰਿਹਾਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛਣ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਮਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਛਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਤੀ ਜਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦਿਹਾਇਓ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ, ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ ਨਿਮਕ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਲੇਗਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੇਗਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਵੀ ਪੈਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੇਗਾ, ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਮਿੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ
साचा नाव ते गुरु नानक देव जी महाराज नूं कह दईए तुसीं औखा कहिंदे मैं हुणे 10 दफा कह दिंदा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु आप कहिंदे औखा एक ही औखा नहीं औखा है ज़बान उचारण करे ते मन सुने इसे नूं कह रहे ने मेरे पास कठिन है। भगत कबीर कहिंदे ने वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदाए एक दम देच किधरे टिक जाओ खुदा होने ही हाजर तुसी खुदा दे रूप हो जाओगे। भगत कबीर लबा लब्बे कुन दम्बा दम नोशकुन वमे हर दो आलम फरामो शुकुन भाई साहब भाई नंदलाल दम एक प्याला है इनू भर खुदा दे नाम नाल गल वखरी तेनू कितने एक दम आमदन ये प्याले खाली नहीं आने भर दे लवा लब्बे कुन दम बदम नोशकुन गमे हर दो आलम फराम ओशकुन जे दो जहाना दे पाप संताप मिटाना चाहना है दमा दे प्याले नू भर भर दे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब नू यही आख्या सी तेरे दमा दे प्याले खाली ने कुछ भी नहीं है इनू आबे हयात नल भर इनू भर दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए महाराज की बाणी। भगतां दी दुनिया च अज की है अज तो मुराद सारा दिन नहीं अज तो मुराद एक दम अज है। बाबा फरीद कहिंदे ने आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजणिया मनो मचिंदणिया कल ते क्यों छोड़दा है भविष्य ते क्यों छोड़दा है हुणे ही मिलाप लै खुदा दा अज लै हुणे ही लै। बाबा फरीद ये गल वखरी है कि 26 साल बड़ी साधना की उन्होंने भी ऐसी केड़ी साधना जिहड़ी उन्होंने नहीं की। कहिंदे रोटी मेरी काठ की लावण मेरी बुक इस चक्कर च ना पैना जिहड़ा भगत माल दे च लिखिया या थानू सुनाया जांदा काठ दी रोटी पेट ते बाबे फरीद ने बन्नी रखी 12 साल। बाबे फरीद नूं इतना भी नहीं पता सी काठ दी रोटी नाल भुख नहीं मिटदी ते पेट ते बन्नन नाल भुख नहीं मिटदी पेट दे छपान नाल भुख मिटदी। क्या फरीद नूं इतना भी नहीं पता सी बड़ियां बचकानियां कहानियां जिहड़ियां सी भगतां संतां महापुरशां नाल जोड़ देंदे आ उहनां नूं भी बचकाना बना के रख देंदे। फिर की अर्थ ने रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख बिरत हो गया सी शरीर बाबा जी दा ते दंद नहीं सन सारे रह गए। खुद कहिंदे ने चबण चलन रतन से सुनियर बह गए चबण मेरे दंद जांदे रहे नहीं ने। पुराना जमाना इस तरह दे डेंटिस्ट नहीं आंदे सन कुछ दंद ला देन दंद नहीं सन। धन गुरु अमरदास जी महाराज भी सत्थू गोल के पींदे सन या दलिया खांदे सन दंद नहीं सन। बाबा फरीद कहिंदे ने रोटी मेरी काट के घरां चो मंगियां हुईयां रोटियां आंदियां सन डेरे च ते बचियां कुचियां रोटियां लोकी दे देंदे सन बचे कुचे नान वो डेरे च आ जांदे सन ते फरीद उदों ही खांदे सन जद भुख है उंज नहीं खांदे सन। लावण मेरी बुक मुल्तानी जंग मंगयाना मियां वाली दा इलाका पता है साग सब्जी नू की कहिंदे लावण अज भी लावण कहिंदे लावण मेरी बुक साग सब्जी की है बस बुक मैं बुक दे च खाना मैनू स्वाद आउंदा। आखिर साग सब्जी इस वास्ते ना कि रोटी थोड़ी स्वादी लगे उंज रुखी खानी औखी। बाबा फरीद कहिंदे लावण की है मैं अर्ज करा अज भी मुल्तानी वीर दिल्ली च बथेरे ने पुराने बजुर्ग लावण ही कहिंदे ने। जंग मंगयाणिया दा इलाका खुशाब कुंदियां दा इलाका मियां वाली दा इलाका डेरा गाजी खान दा इलाका लावण कहिंदे। रोटी मेरी काठ की सुकियां रोटियां कठ वर्गियां ने लकड़ वर्गियां ते मूंह दे च दंद ना होण ते आपे लकड़ वर्गियां ने सुखियां रोटियां उन ते मूंह दे च दंद ना।
रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख, पर मैं खांदा हो दवा जद मैं बहुत भुखा होना, उंज नहीं खांदा। बड़ियां स्वादी लगदियां, बड़ा स्वाद आंदा है, बड़ा रस आंदा है। साधना ते बड़ी गहरी कीती फरीद ने, पर कहिंदे हुणे ही मिला लो कि इवें लंबे इन्ने साल लाने, इन्ने दिन खपना, इन्ने सालां बदी बंदगी करनी, हुणे ही लै आज मिला वा शेख फरीद। ताकम कूंजणिया मनो मचिंदणिया, जे मन नू मछराण वालियां, मन नू मछरांदियां कौन ने? वाशनावां केड़ियां? भविष्य दी चिंता, भूतकाल दियां यादां, और की ने? जब तुसी बाणी पढ़ रहे हो ना, ते प्रश्न खड़ा होवे की करिए, मन नहीं लगदा, तो मन किथे चला गया? गुजरे हुए कल दे चला गया, आने वाले कल दे चला गया, और की है? गुजरे हुए समय दियां यादां होंदियां ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दें ताकि गल हमेशा लई थानू याद रहे, कम से कम ये सवाल ते फिर किसे ता भी ना करना। मन भटकदा जी, मन भटकदा है, मन भटकदा नहीं है, मन चला जांदा है गुजरे हुए कल दियां यादां च, मन चला जांदा है आने वाले कल दी चिंता च। क्यों चला जांदा है भूतकाल दे च? मैं फिर दोहरावां, गुजरे हुए समय च मिले सन कुछ सुख, अपने निशान छड गए ने, याद आउंदे ने। गुजरे हुए समय च मिले सन कुछ दुख, अपनियां चोटां दे नक्श छड गए ने, याद आउंदे ने। दुख सुख याद आउंदे ने, बहुत गहरे दुख जो भोगे होन याद आउंदे ने, बहुत वड्डे सुख जो मिले होन ते चले गए होन याद आउंदे ने। मन चला जांदा है गुजरे हुए कल दियां सुख दुख दियां यादां विच, मन चला जांदा है आने वाले कल दी चिंता च। क्यों? हुण जो मिले है किधरे ए ना चला जाए, चिंता। पिछे ते मिले सन सुख चले गए, हुण जो कुछ है किधरे चला ना जाए, ए जीवन है किधरे चला ना जाए, जवानी है किधरे चली ना जाए, मिले ने सुख किधरे चले न जान, चिंता। पता है गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक थानू सारिया नू कंठ होवेगा, क्योंकि श्लोकों की बाणी च यह श्लोक जदों आउंदा है मैं देखिया सारे ही पढ़ते हैं, पर इहदे अर्थ बड़े गैबी ने, अगम्मे ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਿੱਧਾ ਸਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਰਥ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। दरअसल महाराज इत्थे ये कह रहे, चिंता ना कर, चिंता ते तां कर जे कुछ अनहोनी होंदी होवे। पता है चिंता किस गल दी? चिंता दे दो कारण मैं थोड़े सामने रखा जो इस श्लोक दे साहिब बयान पे कर दें। पहला, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा है जगत नाल होवे पिया, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए, ये चिंता बनी हुई। दूसरा, चिंता का कारण ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना ऐसा होवे, ऐसा होना चाहिए मैं चाहना, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना होवे, ये चिंता दे दो कारण ने। मैं फिर दोहराना ताकि पूरी पकड़ आ जाए। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा जगत नाल होवे। कबीर कहिंदे ना, पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान। केड़े चक्करां च तू पिया है? पड़ोसी दी अर्थी निकली है तेरी भी निकलेगी, केड़े चक्करां च तू पिया है? पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होया किसी का नुकसान होवे पिया, मेरा तो ना होवे।
होइए किसी दी बेइज्जती होवे भाई, कम से कम मेरी ते ना होए। कोई असाध रोग असाध बीमारी चमड़ीए किसी नू, कम से कम मैनू ते ना चमड़े। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होए। पता है गुरु तेग बहादुर साहब इस श्लोक की कह रहे ने, जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता केड़ी गल, परे सुट। जो होंदा है वह होंदा, तेरे लख रोकण दे बावजूद भी नहीं रुकेगा। जो नहीं आउंदा नहीं आउंदा, तेरे लख करण दे बावजूद भी नहीं होवेगा। जो होंदा है वह होंदा, जो नहीं आउंदा नहीं आउंदा। तू लख कोशिश कर, मैं बुढ़ा ना हुआ, जवानी बुढ़ेपे च बदलेगी। बस एक ही उदाहरण काफी है। तू लख कोशिश कर, मेरे चिट्टे वाल ना उन होंगे। कर जिन्ने उपाय करने ने कर ले। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चिंता है, हो ना जावे। ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता है मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। इसे नु गुरु अर्जन देव जी महाराज खुलासा करके बयान करते हैं, जो होवा हो वत सो जाने। आख्या गया ना सानू हुक्म मनो, ते हुक्म की है, जो होवा हो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया होना सी, होना हार है। तेरे कीते कर्म उस दे बने भोए विधान, जो कुछ होया है ये होना हार सी, होके रहना सी। हुण इसनु खिड़े मथे कबूल कर ले, ते प्रभु दा चिंतन कर। पर हुण गिलिया नाल भरिया ऐसा ते नहीं होना चाहिए सी, ये क्यों होया है? एक सूफी संत इसनु इंज बयान करता है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कलब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। मन चला जांदा है गुजरे हुए समय दियां यादां विच, मन चला जांदा है आन वाले समय दी चिंता च, इनू लिया वर्तमान विच। ते वर्तमान किए एकदम एकदम, टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदा है। बस एक दम दे चले आओ, इस मन नो भगवान हाजर नाजर है। ना किसे मंदिर चो मिलेगा, ना किसे गुरुद्वारे च, ना किसी मस्जिद च, ना किसे चर्च दिच, ना किसे तीरथ दिच, ना किसे होर पहाड़ दे चों गुफा दे चों। जद भी लभेगा ए नौ निद नाम, नौ निद अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरुद्वारे गया होया उसका सफल, जिसनु समझ आ गई गुरु नु अंदरों प्रगट करना। मंदिर गया होया उसका सफल, जिन्हों पता चल जाए हरि नु अंदरों प्रगट करना है, और जीवन नु हरि मंदिर बनाना है। बारों हिंदू वीरा ने एक प्रतीक बनाया है, जिथे जिथे हिंदू टेंपल होंदे ने दरवाजे ते एक घड़ियाल लटका देंदे ने, अंदर मूर्ति आउंदी है, मूर्ति अंदर आउंदी है, ते घड़ियाल वजा के अंदर जाना। एक प्रतीक है कि गुंजार करके आवाज करके धुन अलाप के ही अंदर प्रवेश कर सकोगे। ध्यान नु ले जाण वास्ते धुन चाहिए है, धुन दे आसरे ते ध्यान अंदर जावे। घड़ियाल लटका रखे, उन्हों बजांदे ने, फिर अंदर जांदे ने, मूर्ति दे दर्शन करदे ने। मूर्ति ते अंदर है, घड़ियाल बाहर है। गुरु नानक ने नुक्ता निगाह ए रखिया, अगर जीवन मंदिर है ते मूंह दे जबान परमात्मा ने आपे ही घड़ियाल लटका के रखे, और केड़ा घड़ियाल लटकाना है। आई घड़ियाल है, इसनू बजाओ, ते इस ते असवार करके ध्यान नू अंदर ले जाओ, घड़ियाल नू वजा के अंदर जाओ। यही मंदिर है हरि मंदिर, एहो शरीर है तिस विच सच्चे का वासा। भगत पीपा जी कहिंदे कायो देव कायो देवल कायो जंगम जाति,
कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। मेरी काया देवल बन गई, मंदिर बन गई। क्यों? हरि प्रगट हो गया। मंदिर विच गया होया सफल उस मनुख दा जिदा जीवन हरि मंदिर बन गया। ये जबान घड़ियाल है, इसनु बजाना है। हुण मैं फिर दोहरावा ते समाप्ति करा। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदे आ, एक दुख भी नहीं मिटना, एक पाप भी नहीं मिटना। जिहड़ा असी सुनदे आ ना, एक दफा वाहेगुरु आखो ते जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाणगे। सही है, सही है। पर एक दफा आखना ए नहीं जिहड़ा असी कहिंदे आ, ए नहीं। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदे आ, एक पाप भी नहीं धुलेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा और नहीं मिटदे। एक दफा वाहेगुरु आखदे आ, सारे ही दुख मिट जांदे, सारे ही पाप मिट जांदे। दूसरा, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना बहुत सौखा है, बहुत सौखा है। कई सैकड़े पाठ जपजी साहब दे कर देन, सुखमनी साहब दे कर देन, असी जीतने कर लें, ठीक है। एक पंक्ति पढ़नी बड़ी कठिन है, औखी है, पर ठीक है, करी जाओ। किसी दिन एक पंक्ति पढ़न दी जाच आ जाए। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु करना बड़ा आसान है, एक दफा वाहेगुरु जपना बड़ा औखा। जबान उचारण करे और उचारण होवे जिहड़ी घड़ियाल दी आवाज है। घड़ियाल दी आवाज धुनाकार है, सहज बिलोवो जैसे तत् न जाए। इस तरह दी धुनाकार आवाज लंबी ते मन उसनु सुने। इनू ध्यान साधना कहिंदे ने, जप साधना कहिंदे ने, इनू नाम अभ्यास कहिंदे ने। ये नुक्ता मैं थोड़े सामने रखे। प्रेरित होके जिहड़े अमृत वेले अद्धा घंटा 15 मिनट 10 मिनट करनगे, देखो रोटी खांदे आ 15 मिनट ही लगदे न, सारा दिन भुख नहीं लगती। मेरा अनुभव है अगर 15 मिनट भी तुसी जप कर लो, चलो मन नहीं जुड़िया, शब्द सुरत एक नहीं हुई, मन थोड़ा जिहा नेड़े चला गया, तां भी इतना रस बन जाएगा, दिहाड़ी चंगी लंघ जाएगी, 24 घंटे ठीक लंघ जाणगे। किसी सरूर दे च लंघणगे, किसी मस्ती च लंघणगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। एक तिल नहीं बनने काले, महाराज कहिंदे ने एक तिल जितने भी घालना व्यर्थ नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं जाएगी, इस चक्कर च ना पो। लेकिन पूरे इरादे नाल, पूरी दृढ़ता नाल, पूरी मेहनत नाल, कम से कम मनुख 20 मिनट ते कढ़े। ते जे 20 मिनट भी नहीं कढ़ सकदा तो एक गल स्पष्ट हो गई, इहदे कोल संसार लई वक्त है, निरंकार लई नहीं। अज निरंकार की कोई अहमियत नहीं इस दी दुनिया च, कम से कम 20 मिनट ते कढ़। ते जिस जगह बैठ के रोज रोज जप करोगे वह जगह चार्ज हो जाएगी, यह भी मैं अर्ज कर दें। उस जगह का अपना असर है। इस वास्ते कहिंदे जिथे कथा कीर्तन होवे गुरुद्वारा मंदिर, उत्थे दुनियावी गल नहीं चाहिए। सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वकाणी। जिवें जुतियां असी बाहर रख के आंदे आ ना, फिजूल दियां गल्लां भी उस जगह तो बाहर रखीए जिथे जप तप हुंदा होवे, कथा कीर्तन हुंदी, ताकि उत्थों दी जिहड़ी वाइब्रेशन है उह पावन बनी रहे, उत्थों दा माहौल पवित्र बनिया रहे। मैनू हजारां सतसंगियां ने गुरसिखां ने आख्या भी ज्ञानी जी तुसीं दिल्ली दियां बाकी कलोनियां च भी कथा कर दो, पर जो रस सानूं सीसगंज साहब आउंदा है होर कलोनियां च नहीं, उत्थे भी असीं आउंदे आ। एक ने नहीं, एक कह देंदा तो शायद मैं नज़रअंदाज करता, कईयां ने कहा उत्थे कीर्तन सुनदे आ बड़ा रस आउंदा है। उही रागी आउंदे ने उस कलोनी च करदे पैंदे ने, असीं सुनन वास्ते जांदे आ, खेड़ नहीं बणदे। जद इस तरह लगातार कईयां ने मैनूं कहा उत्थे आउंदे आ ते कुछ रस बणदा, तो मैं उन्होंने कहा मैं एक गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान, एक तो ये इत्थे वकत का अवतारी पुरश कुछ दिन रहा है, इस मिट्टी अजे भी कुछ
जिंदगी है, दूसरा 24 घंटे इतने बाणी का पाठ चलता ही है, कीर्तन के रूप च, पाठां के रूप च, कथा के रूप च। और जिस वक्त सुखासन हो जाता है फिर सेवा के रूप च, और जप करद सेवा कर दें नौजवान वाहगुरु की धुन अला परे आते हैं, धुलाई करते पे आते हैं रात दे कोई 1-1.5 बजे तक, वो धुलाई करके फिर नवे सिरों विछाई आती है। ये सारा कम ये सारी सेवा जप करद करते हैं, तुम देख सकते हो कभी, क्योंकि कलोनिया हाजरी भर के दस अक्सर 12-1 बजे सीसगंज साहब पहुँचता, मेरी रिहायश उत्थे आती है, तो मैं इन नौजवानों नू सेवा करद देखता हूँ। 24 घंटे जिथे वाहेगुरु का जप चल रहा है उत्थों की फिजा, तो जिस गुरुद्वारे किधरे घंटा अद्धा घंटा पाठ होंदा होगा, किधर शाम नू रहिराज साहब 15 मिनट, किधर सवेरे हुक्मनामा, कलोनिया के गुरुद्वारे तो यही कुछ, या सा दीवार का कीर्तन अद्धा घंटा पौना घंटा सारा दिन तो कुछ भी नहीं। मैं कहा उत्थे जिहड़ा तुहानू रस आ जाता है, आनंद आ जाता है, उत्थों दीआं लहरां ने, उत्थों दा माहौल है, इहनू कहिंदे ने अस्थान भेद, जगह दा असर। सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, जिथे दिन रात कीर्तन चलता है मैनू वह जगह दसो, क्योंकि वह जगह चार्ज हो गई होगी, उस जगह शक्ति होगी, वो जगह इतनी पावन हो गई होगी। मैं अर्ज करा जिथे बैठ के घर दे तुसी नाम जपो और रोज जपो, सवेरे शाम जपो, वो जगह इतनी चार्ज हो जाएगी कि दे दुष्ट तो दुष्ट बंदा भी उत्थे बैठे वो मुंहों भी वाहेगुरु निकल जाएगा, उस जगह का असर है। इनू अस्थान भेद कहते हैं। सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, कदी कदाई कीर्तन आंदा वो जगह ना दसो मैनू। गुरु अर्जन देव जी, वो जगह दसो जिथे 8 पैर कीर्तन आंदा। सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, नीता प्रति होंदा होवे, मैं उत्थे बैठ के सुना, क्योंकि वो जगह चार्ज होई होवेगी, उस जगह का अपना असर होवेगा। हजारां मनुखां दा यह अनुभव है, विस्टर बुक च लिख के गए ने दरबार साहब, इत्थे आउंदिआं सानू सकून मिले, शांति मिली है, भावें जो कुछ गायन हो रहा सी साडी समझ तो परे, मंजी साहब दे भावें कथा हो रही सी साडे समझ तो परे, पर इत्थे आके शांति मिलती है, सकून मिलता है। एक ओही मंदिर है जो 24 घंटे बोल रहे हैं, 24 घंटे कीर्तन हो रहे हैं। चलो समा तो हो गया, पर 1 मिनट मैं थोड़ा लवा। मैं एक दिन कला ते बोल रहा सी, ग्वालियर की गल है, तो ग्वालियर का जिहड़ा गुरुद्वारा है उत्थों के महाराजे सिंधिया ने बनवाया सी, मस्जिद भी बनाई मंदिर भी बना के दिता गुरुद्वारा भी, फौज दे विच उदों सिख होंदे सन। ये 3 अस्थान नाले नाले उसने बनाए ने, विचकार मंदिर है, एक पासे मस्जिद है, एक पासे गुरुद्वारा है, तिने एक ही लाइन विच ने, और तिने बड़े कीमती पत्थर नाल बनाए गए ने, और उन्हां दे घड़ाई का कम बड़ा गजब दा है। उत्थे किधरे मैनू गल पूरी कला ते मैं बोल रहा सी, कला हुनर नू कहिंदे ने, संगीत एक कला है, कविता एक कला है, चित्रकारी कला है, नृत्यकारी कला है, एक कला किन्नी तरह की है। पुराने जमाने च अवतारां नू नापदे सन इहदे च कला कितनी है, जैसे कहिंदे ने श्री कृष्ण च 16 कला सन, राम दे 14 कला सन, राम नू छोटा मनदे ने कृष्ण तो, उन्हों संपूर्ण अवतार भी नहीं मनते, संपूर्ण अवतार कृष्ण नू मनदे ने। महाराज गुरु अर्जन देव जी ने इस पंक्ति नू जो जिहड़ी मनौत है अगे कीता, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चलिया। परमात्मा सिर्फ 16 कला नहीं, अनंत कला नहीं गिण सकते, उसे तो कोई कला लेके आ जाते 16, कोई 4, कोई 6, किसी नू अंसा अवतार भी कहे, अंश मात्र कला है, बथोड़ी अंश मात्र कला। तो मैं बोल रहा सी जिहड़ियां कला आउंदियां ने, एक सियाणा सिंधी वीर मेरे कोल आया, कहन लग गैने जी
थानू किले ते ले चलदे आ, थानू कला का एक नमूना दिखांदे आ, जीवदा जागदा देख के तुसी दंग रह जाओगे कि मैं थोड़ी कला की कथा सुन के प्रभावित होया ते थानू कला की जीवदी जागदी मूर्ति दिखाना चाहना। तुसी समा कढ़ो मेरे नाल, चलो किले ते। मैं किले ते मैं रोज़ जाना, छेवें पातशाह का स्थान बने हुआ, मैं दर्शन करूँ रोज़ शाम नूं जाना हुंदा। ते तुसी दसो किस वक्त कहिंदे हो मैं चलदा। कहन लगे ठीक है फिर शाम नूं चलांगे। शाम नूं उत्थे गए, वह एक मैनूं मंदिर च लै गए, बड़ा उच्चा मंदिर है, करीबन बंदा 10 मील भी दूर होवे ना ट्रेन दे दिखाई देंदा है, दूरों दिखाई दे, बड़ी बुलंद चोटी है। उस मंदिर दे चले गया ते मैनू कहन लगा देखो कला दे नमूने, पत्थर दे उते चित्रियां या तस्वीरां, बेल बूटे, वाकई उन्हां हत्थां नू दाद देनी पेगी जिन्हां ने बनाए। कोई अद्धा घंटा मैं वह मंदिर देखिया। मैनू कहन लगे ज्ञानी जी इस मंदिर बारे की राय है? मैं कहा कला दा नमूना है, वाकई महान है, कला जीवदी जागदी दर्शन पई देंदी है। पर मैं आखा मित्रा बुरा ना मनाई, मैनू अफसोस है ये मंदिर मुर्दा है, मरिया होया है। मैनू कहन लगे तुसी कथा करदे हो, असी धार्मिक बंदा थानू समझदे हां, तुसी इस तरह का शब्द कहिंदे हो मंदिर बारे मुर्दा है। मैं कहा मित्रा तू व्याख्या मेरे को सुन ले, जीवदे जागदे मनुख की यह पहचान आउंदी है बोलदा है, मुर्दे की यह पहचान आउंदी है लख भी सिर खपाओ नहीं बोलदा। मैं कहा इत्थे कबूतरां विठां पईआं करदीआं ने, गंदगी इतनी है लगदा है साल तो इत्थे किसी ने झाड़ू बुहारी भी नहीं दित्ती, कई सिलां पत्थर निकलदे पए ने, डेडेरी हो रहे ने, ना इत्थे कोई आरती, ना इत्थे कोई जप, ना इत्थे कोई धूप दीप, ना कोई इत्थे मंगलाचरण, ना इत्थे कोई प्रभु दे गीत, ये बोलदा ही नहीं, मुर्दा है। सजाया होया, संवारिया होया, शिंगारिया होया खूबसूरत मुर्दा है। मनुख ना बोले शिंगारिया होया संवारिया होया की मैंने रखदा है, नाम बिना जेता व्यवहार ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार। शिंगार मैं कहा बड़ा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, मंदिर मुर्दा है। जीवदा जागदा मंदिर होंदा जिथे आरती होवे, पूजा होवे, पाठ होवे, जप होवे, तप होवे, हरी कीर्तन होवे। मैं कहा रूहे जमीन ते एक ऐसा मंदिर भी है 24 घंटे बोलदा है, वो है हरी मंदिर दरबार साहब 24 घंटे बोलदा है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया वो मंदिर हमेशा खतरे च रहा है। पता है क्यों? जिंदगी नू खतरा है, कबरां नू खतरा नहीं आउंदा, जलदे दीवे नू खतरा है, बुझे दीवे नू खतरा नहीं है, फुल्लां नू खतरा है, कंडियां नू खतरा नहीं आउंदा, जिंदगी नू खतरा आउंदा है, कबरां नू खतरा नहीं आउंदा। 24 घंटे बोलदा उहदे कोल जिंदगी, अगर की होया जे उहदे खतरियां च रहिंदा है, इस चक्कर च ना पैणा, अबदाली ने गिराया। मसे रंगण ने उस अस्थान की बेइज्जती की थी, हद हो गई। ये मंदिर ऐसा निगाह च आया, हर तरह का अनर्थ इत्थे करो, क्यों? जिंदगी है, बोलदा है, जीवन है। डिठे सबे थाओ नहीं तुद जेवया, बद्धो पुरख विदाते तां तू सोया। अंदाजन 12 महीने च 10, 1 महीना 5 दिन हर साल उत्थे कथा करदा है, और 40 साल तो मेरा नागा नहीं पिया कदी। मेरा अपना भी अनुभव है, मैं सारी दुनिया च कथा कीती है, उत्थे कथा करनी मेरे को बंदगी हो जाती है, बाकी जगह ते एवें किरत हो जाती है, समा पास करना हो जाता, उत्थे बंदगी हो जाती है। और मेरा अपना अनुभव मंदिर बोलदा 24 घंटे बोलदा, उत्थे बड़ी जिंदगी है, उत्थों की वाइब्रेशन, उत्थों की लहर, उत्थे दा जीवन। दिल्ली दिया संगतां नूं मैं कहा जे थानू सीसगंज रस ज्यादा आंदा, इत्थे जिंदगी है, इत्थे किसी ने अपना वह खून डोलिया जो अमृत से, इत्थे वह आत्मा कई दिन बैठी रही जो
ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਜਪ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਰਸੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨੀ ਹੋਵੇ, 4 ਫੁੱਟ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਰਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਜਪ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ 5 ਦਫ਼ਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿਤਨਾ ਕਰਾ ਲਏ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਪ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਰੂਰ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਿਰਫ 5 ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਣਾਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सौगात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणा दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी साहित्यकार विद्वान उन्हां दा ऐसा कहना है कि मनुखा नू पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकता है, या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण दे मुताबक पंज तरह दे ही होंदे ने। एक किस्मा मैं थोड़े सामने रखा और इस विच ये देखांगे आपां कि असी कित्थे खड़े हैं। इन्हां पंजां विच पहली श्रेणी, दूजी श्रेणी, तीजी श्रेणी, चौथी या पंजवें, प्रथम श्रेणी, पहली श्रेणी, इसनूं वो इस तरह बयान करदे ने, कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए। ते पूर्ण कदों होंदा है? मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराधया, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं, मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लेने वास्ते तैयार हो गया। दूजा चोला, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कई जन्मां तों मन वासना वस हो के बार बार शरीर धारण करदा रहा, चोला बदलदा रहा। शरीर दे मरण दे नाल वासना नहीं मरदी, शरीर दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत विकारां दी मौत नहीं। अगर होंदी तो जप तप दी लोड़ नहीं सी, सत्संग दी लोड़ नहीं सी, मरांगे ते अहंकार भी मर जाए, मरांगे ते विकार भी मर जाएंगे, मरांगे ते लोभ भी मर जाएगा, क्रोध भी मर जाएगा। नहीं मरदा शरीर, मरदा है अहंकार, नहीं मरदा शरीर। बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं होंदी। शरीर बिरध हो जाता है, लोभ बिरध नहीं आता। लोभ सदा जवान लैंदा, अहंकार सदा जवान रहिंदा, विकार सदा जवान रहिंदे, वासना सदा जवान रहिंदी। अगर शरीर दी मौत ही वासना दी मौत आउंदी, मैं फिर दोहरावां, इस सत्संग दी लोड़ नहीं सी, कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी, दान पुन जप तप दी लोड़ नहीं सी। शरीर दी मौत वासना दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत अहंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर बिरध हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा आंदा ही नहीं। शरीर ते बिरध हो गया, वासना ते बिरध होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरध हो गया, अहंकार ते जवान खड़ा। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा दे, अगला जन्म करा दे। शरीर मर भी जाता है, वासना नहीं मरती। शरीर मर जाता है, लोभ नहीं मरता। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज के उच्चारण किए आसा दीवार दे श्लोक का इंज खुलासा करते हैं, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए।
फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज नू समझदा कि शरीर मर जांदा वासना नहीं मरदी, शरीर मर जांदा लोभ नहीं मरदा, शरीर मर जांदा अहंकार नहीं मरदा, तन दी मौत हो जांदी है मन दी नहीं होंदी, वो फिर दूसरा तन धारण कर लैंदा। वासना मर गई है, तन दी मौत नहीं है, इनू कहिंदे ने जीवन मुक्त। हंकार ते मर गया है, तन अजे जिंदा है, इनू कहिंदे ने जीवदियां जी मुक्त है, मुक्त। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे, सारे बंधन टुट गए, बंधना दे चे नहीं जी रहा। हंकार दा बंधन आउंदा, लोभ दा बंधन आउंदा, वासना दा बंधन आउंदा, सब तोड़ दिते ने, सब टुट गए। तन दी मौत ते नहीं हुई, हंकार दी मौत हो गई। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया। बड़ी साधना कीती होनी है, बड़ा जप तप कीता होना है, अमृत वेले उठ के बड़ी ध्यान साधना कीती होनी है, उंज ते वासना नहीं मरदी, उंज ते लोभ नहीं मरदा, सिर्फ तन मर जांदा है। प्रकृति एक दिन तन नू बुढ़ा कर देंदी है, मन नू बिरद नहीं करदी। प्रकृति एक दिन तन नू खत्म कर देंदी है, मन नू खत्म नहीं करदी। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, इस चक्कर च ना पैणा। कई इस तरह सोचते रहिंदे ने, जवान बुढ़े होवांगे अमृत छक लवांगे, बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान होवेगी। रोज रोज वासना जवान आउंदी है, बुढ़ी नहीं आउंदी, रोज रोज तन बुढ़ा होंदा। रोज रोज लोग जवान हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहे हैं, निर्बल हो रहे हैं। रोज रोज हंकार ताकतवर हो रहा है, रोज रोज तन कमजोर हो रहा है। तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है, तन दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। बच्चे दा तन छोटा है, उम्र छोटी है, वासना छोटी है, लोभ छोटा है, हंकार छोटा है। जवान है, हंकार जवान हो गया, लोभ जवान हो गया, वासना बड़ी प्रबल जवान हो गई है, तन बुढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। लोभ अहंकार वासना पहले नालों भी ज्यादा ताकतवर हो गई, शक्तिशाली हो गई, क्योंकि रोज रोज वासना शक्तिशाली होती है, रोज रोज हंकार दी ताकत वधदी है, रोज रोज लोभ दी ताकत वधदी है। इस वास्ते एक बुढ़ा मनुख जितना लोभी होंदा जवान नहीं होंदा, एक जवान मनुख जितना लोभी होंदा बच्चा तो उतना होंदा ही। ये भी मैं रोज रोज उम्र दे वधदिया लोभ बलवान होंदा, अहंकार बलवान होंदा, वासना बलवान होंदी है। आम लोगों का ख्याल है, सिर्फ आम लोगों का, धर्म का नहीं, महापुरुषों का नहीं, कोई बुढ़ा मनुख हो गया तो लोभ भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा, वासना भी बिरद हो गई होगी या मर गई होगी, हंकार भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा। भुलेख है, एवं भुलेख है, फिजूल भुलेख है। एक जवान के अंदर भी हंकार इतना बलवान नहीं होता जितना बुढ़े चाहता है। आप सुन के हैरान होवोगे, सारी दुनिया के जड़े राजनैतिक लोग ने ना 97% बुढ़े ने, जो हुक्मरानी कर रहे ने, सारी दुनिया नू चला रहे ने, बिरद ने। कई तो ऐसे ने, चार बंदे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ। ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਚੌਧਰੀ 97% ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਕਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜਗਤ ਜਲ ਰਿਹਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਤਰਸ ਵੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਣਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵੰਡਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਕੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ, ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਪਕੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ, ਸਰੇਆਮ ਪਿਆ, ਲੁਟੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੁੱਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਗੇ ਝੂਠ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਆਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਦਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਮਰਮ ਕੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ,
ਇਹ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਨਾਹੀਂ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਨੌ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਚਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕਵਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕਵਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੇ, ਲੋਭ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸ ਹੋਂ ਦਿਸ ਧਾਵਤ, ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ ਹਰ ਵਕਤ ਧਨ ਦੀ ਆਸ। ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹੇ ਅਰਬਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਸਾ ਧਨ ਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ। ਲੋਭ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸ ਹੋਂ ਦਿਸ ਧਾਵਤ, ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਤਨਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਕ, ਤਿੰਨਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕਵਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੇ, ਲੋਭ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸ ਹੋਂ ਦਿਸ ਧਾਵਤ, ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੇ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ। ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਆਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ, ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਤ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਵਤ, ਲਾਜ ਨਾ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਸ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਗਾਵਤ, ਕੁਮਤ ਬਿਨਾ ਸੇ ਤਨ ਕੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਤੇ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗਿਆਨ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਬਾਵੇ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਕੋਈ ਅਟਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਡਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਰਮਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਰਲ ਬਾਡੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਖੂਨ ਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਸ ਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਕਾਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ? ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਪੇਟ ਪਾਠ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕਥਾ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਜਪ ਤਪ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਗਤ ਬਣਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਤਪ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ
जे को भुनचे तिसका होयो उदार, कोई खावे ते सही है, नहीं खाते। मैं फिर अर्ज करा, मन का एक छोटा जिहा भाग किधरे पाठ दे चाहता, बाकी नहीं आता। मन का एक छोटा जिहा भाग गुरुवारे आता, बाकी नहीं आता। इस वास्ते कीर्तन कथा जप तप गुरबाणी मन तक जाती नहीं, मन विच प्रवेश नहीं करती। ते जे हुण भोजन दी बुरकी तन विच गई नहीं ते खून कित्थों बनेगी, मास कित्थों बनेगी। गुरु दा शब्द मन विच गया ही नहीं तो मुक्ति कित्थों नसीब होवेगी, बंधन किवें टुटणगे, आनंद किवें मिलेगा। शब्द मन तक नहीं जांदा, ना जाण दा एक कारण भोजन दी भुख तन नूं लगदी है, शब्द दी भुख मन नूं नहीं है, नहीं है। नाम दी भुख मन नूं नहीं है। खुशकिस्मत है वो मनुख जिन्हों नाम दी भुख लग जाए। साचे नाम की लागे भूख, उद भूखे खाए चलिए दुख। खैर मिल मकामाना, कुछ शरीर जो सूक्ष्म ने उन्होंने उत्ते तन का अस्थूल तन का बंधन नहीं आता। इस अस्थूल तन की अपनी सीमा है, सूक्ष्म की सीमा नहीं, किधरे भी जा सकता है। इस सूक्ष्म शरीर मुक्त आत्मावां को लहौंदे, मुक्त सिर्फ सूक्ष्म शरीर ने। परमात्मा दे जी रहे ने, परमात्मा दे विचर रहे ने, किधरे भी जान व्यापक है परमात्मा, किधरे किधरे। फिर इस तन विच आके जन्म ले लेंदे ने, वासना वस होके नहीं, परोपकार वस होके। जन्म मरण दोहो में नाही, जन परोपकारी आए। ते मैं ये अर्ज करा, सूक्ष्म शरीर मुक्त शरीरां तो इलावा कुछ होर भी आउंदे ने, देवतियां दे, ओतां ते प्रेतां दे, उन्हां कोल भी ये तन दा बंधन नहीं होवे आउंदा, जिथे चन जा सकदे ने। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ठीक है, सनातनी ऐसा कहंदे ने, जिथे रामायण दी कथा होवे उत्थे हनुमान होंदा है। मैं कुछ ब्राह्मण वीरां नूं कथा वाचकां नूं कहिंज ना आख्या करो, अगर ये कहिंदे हो ते हनुमान मुक्त नहीं होया। अजे भी देवता, चलो देवता है पर भटक रहे, देवते भी भटकदे ने, भूत प्रेत भी भटकदे ने। इंज आखो, जिवें हनुमान प्यार करदा सी राम नाल, हनुमान दी तरह कोई प्यारियां रूहां उत्थे होंदियां ने जिथे रामायण दी कथा होवे। पहले तो मैं उंज उपरों उपरों कहिंदा सी, पर हुण मैं दावे नाल कहिंदा जिथे सतसंग होवे उत्थे सूक्ष्म रूहां होंदियां ने, उत्थे गुरमुख रूहां होंदियां ने जो मुक्त नहीं होईयां। जैसे 100 मील दी वाट होवे ते कोई 90 मील चले आए ते शरीर दा अंत हो गया, शरीर दी उम्र इतनी सी, 10 मील दी वाट ते रह गई, वो ते तय करनी है, ते उहदे वास्ते फिर जन्म लेना पएगा। ते जिहड़ा इतना चल चुका है वह हर मां दे राही जगत विच नहीं आना चाहता, हर पिता दे राही नहीं आना चाहता, हर मां देवते नूं जन्म नहीं दे सकती। जिहड़ी देवते नूं जन्म दे देंदी है, तिन धन जने दी मां आए सफल। क्योंकि देवता पवित्र मन दा मालिक है, उहदे कोल मन है। चलो मैनूं इंज कहण देना, पशु कोल तन है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल सिर्फ मन है, तन नहीं है। मनुख कोल तन भी है, मन भी है। आप सारे सियाने बैठे हो, बुनियादी गल नूं पकड़ना। पशु कोल तन है, मनुख नालों बड़ा भारी विकसित तन है, हाथी कोल है, घोड़े कोल है, पर विकासशील मन नहीं है, सिर्फ तन। देवते कोल सिर्फ मन है, मन है, ये तन नहीं है। मनुष्य कोल ए तन भी है, मन भी है। मुक्ति मनुख दे राही मिलेगी, परमात्मा मनुख दे राही मिलेगा,
ਨਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਹ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਮੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਦੇਵਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਾਵ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣ ਕੇ ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਣੀ ਖਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਖਾਸ ਦਿਲ ਮਖਸੂਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਵੋ ਨਗਮਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਪੇ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਖਾਸ ਦਿਲ ਮਖਸੂਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਵੋ ਨਗਮਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਪੇ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਅਸਲ ਮੇ ਮਖਮੂਰ ਵੋ ਰਾਜ਼ੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਮੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਮਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੂਲ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋਨੀਰ ਬਹਿ ਜਸ ਗਾਵਤ ਨਾਚਤ ਦੇਵ ਚਲੇ ਸਭ ਅੰਗਾ। ਐ ਮਾਂ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇ, ਅਸ਼ਕਬਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਰਹੀ ਹਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਵਾਸੇ ਤੜਪ ਉੱਠੇ ਰੋ ਉੱਠੇ। ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨੀਰ ਬਹਿ ਜਸ ਗਾਵਤ ਨਾਚਤ ਦੇਵ ਚਲੇ ਸਭ ਅੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਖਗ ਗਹਿਰਣ ਮੈਂ ਭਲੀਸ ਦਿਨਸ, ਲਹੂ ਸੋ ਘਾਉ ਚਲੇ ਅਰਧੰਗਾ। ਐਸਾ ਸੂਰ ਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਸਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਠ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਅਣਖ ਉਸਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦ ਦੋਏ ਬੂਤ ਜਨੇ ਜਨਨੀ ਜਨ ਔ ਸਵੇ ਸੁਤ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਵਧਾਏਗੀ ਹੋਰ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਅਜੋਕੀ ਔਲਾਦ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ 5-10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਤੋਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ, 5-10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਏ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈੜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਇਤਨੀ ਮੈਲੀ। ਖੈਰ ਮੁਕਤ ਸਰਸ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ, ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ ਤਿੰਨ ਸੁਨੇ ਦੇ, ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਉਹ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਜਾ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ।
इतनी बड़ी लंबी मुद्दत तक मनुखता किसे परम पुरुख नु उड़ीक लिए। खैर ये स्वतंत्र होंगे ने मुक्त रूहा, चूंकि धर्म का मूल ते दया है, संतुष्टि है। इन्हां आत्मावां कोले सूक्ष्म शरीर संतुष्टि है, दया है। एक दफा मैं फिर दोहरा दें ताकि मजबून पकड़ दे चाह जाए। पशु कोल तन है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल बड़ा विकासशील मन ते है, तन नहीं है। इंज कह ले उहदे कोल असवार ते बड़ा सियाणा है, फुरतीला है, पर उहदे कोल घोड़ा ही कोई नहीं, वाहन ही नहीं है। इंज कह ले केवल मनुख है, इहदे कोल तन भी है, इहदे कोल मन भी है। इस तन की बड़ी महिमा, बड़े भाग मानुक तन पावा, बही परापत मानुक दे होरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस देही दे राही ए मन तू गोबिंद तक पहुंच सकता है। ये देही इतनी महान है, इस देही को सिमरे देव, देवते तरस देने। देवते सूक्ष्म शरीर है, किसे भी तकनी महान होवे, देखनी महान होवे, जिन्हों कहने दिव दृष्टि, दिव दृष्टि, देवतियां नू देखण दी दृष्टि, मनुखा ने देखण दी दृष्टि है, किसे कोल नहीं आउंदी विचारे कोल, जिन्हों असी नेत्रहीण अंधा कह देंदे हां, कोई कद दृष्टि साडे कोल है मनुखा नू वेखण दी। पर जिहदे कोल देवते नू देखण दी दृष्टि आउंदी है उहनू कहिंदे ने इहदे कोल दिव दृष्टि है, देवतियां नू देखण दी दृष्टि है। जद कहा जांदा है जिथे रामायण दी कथा होवे उथे हनुमान बैठा हुंदा है, इह ते अतकथनी है। हनुमान जैसे प्यारे भगत जो मुक्त नहीं हो सके होणगे, हनुमान ते मुक्त हो गया, ते जे नहीं मुक्त हो गया ते इहनू इतना वड्डा संत ते उहनू पूजण दी वी फिर की लोड़ है। नहीं, उह इक मुक्त आत्मा, उन्हों विचकार लियाण दी लोड़ नहीं आउंदी, पर लियांदे ने शायद इस वास्ते लोकां च राम दी शरदा वधाई है, पर थोड़ा जिहा सोच विचार करन वाले मनुख दे अंदर ते शरदा घटेगी वधेगी नहीं। जैसा प्यार हनुमान दे अंदर सी, इस तरह दे प्यार रखण वालियां दा किधरे शरीर दा अंत हो गया, मन प्रभु तक ना पहुंच सकिया, तो यह देवते कहलांदे ने, भटकदे ने। तो देवते सिखां च भी आउंदे ने, मुसलमानां च भी आउंदे ने, हिंदुआं च भी आउंदे ने, पारसी यहूदियां जैनियां बौद्धियां च भी आउंदे ने, भटकदियां होईयां यह रूहां देवते। तुसीं आखोगे मैं कहिंदा की पिया, एक बहुत प्रबल सच्चाई है जिसनूं संसार विच उजागर बहुत घट कीता गया, बहुत घट कीता गया है ना, भरिया पिया है, खला कुछ भी नहीं है। कुछ मनुखां दे मंडल ने जमीन, कुछ देव मंडल ने, देवते रहिंदे ने, फिर कुछ रूहानी मंडल ने मुक्त आत्मा लीन हो चुके परमात्मा च। और वो ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम मैल ना को अटकावे, सब महरम ने कोई अटक नहीं, जिथे जान जा सकते जा सकते। इस तरह दियां आत्मावां जो मुक्त नहीं हो सकियां ते देवते ने, देवते तो मुराद ज्ञानी ने, दीवा जले होया पवित्र ने, जन्म ले सकन, उस तरह दी मां मिलेगी ते होएगा। जने हर किसे मां दी गोद दे राही और जगत दे च नहीं आना चाहते, तो उतने दिन तक फिर किथे रहन, ए फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च रहिंदे ने, अपने अपने मजहब संस्कारां दे मुताबिक, अपने अपने धार्मिक केंद्रां विच रहिंदे ने, सुणदे ने, आनंद लैंदे ने। मन उहनां कोल है, तन है नहीं, भुख प्यास लगदी नहीं, भुख प्यास तन नूं लगदी है, हवा तन नूं चाहीदी, ऑक्सीजन तन नूं चाहीदा है, सूक्ष्म शरीर नूं नहीं। चूंकि तन है नहीं तो तन दी कोई भुख प्यास नहीं, तन दी कोई लोड़ नहीं,
ਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਤਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਲੀਨ, ਬੜਾ ਕਸਾਈ, ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ, ਮਹਾਨ ਠੱਗ, ਬੜਾ ਕਾਤਲ, ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਟਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ ਚ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਚ, ਵੈਸ਼ਿਆਲਿਆਂ ਚ, ਹੋਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਭਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਵੱਡੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ? ਕਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ 25 ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਏ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ 25 ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ 2-4 ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ 700-800 ਸਾਧੂ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 25-30 ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਸਕੇ ਬਣਾ ਸਕੇ ਇਤਨੀ ਬਿਸਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਰੇ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਜਾਵਾਂ ਘਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 25 ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਜ ਖੂਬ ਉਡਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਤਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਦੋ ਸੱਜਣ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਐਸਾ ਲੰਗਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਮਾਂ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਸੰਤ ਚਿਤ ਲੋਈ ਮਿਲੀ ਪਤਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹਮ ਕਰ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਤੋਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਲੋਕ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਚ ਹਰ ਕੀਆ ਭਾਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਿਸਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਭੈੜਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਏ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਖੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਿਨ ਮਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਲੋਕ ਜੋ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਨਰਗਿਸ
अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मनुखता दे बगीचे च कदी कदाई इस तरह का फुल आउंदा जिदे नाल मनुखता मुअत्तर हो जाए ते दुनिया दंग रह जाए। इस तरह दी आत्मावां दा आवना रोज रोज नहीं आउंदा, कीड़े मकोड़े रोज जन्म लैंदे ने। गुस्ताखी माफ। इस तरह दे फुलां दा जन्म कदी कदाई, ये अवतार कहलांदे ने, ये वासना वस हो के जन्म नहीं लैंदे। फिर किवें जन्म आउंदा इन्हां दा? हंकार वस हो के जन्म नहीं लैंदे। हंकार ते इन्हां दा मर गया, वासना ते इन्हां दी मर गई, लोभ ते इन्हां दा मर गया। शरीर दे होंदे ये सब कुछ मर गए, असी ते जीवन मुक्त सन, फिर मुक्त हो गए शरीर दे अंत नाल, लीन हो गए पार ब्रह्म विच। फिर ये किस तरह आ गए, क्यों जन्म होया? ये दया वस हो के आ जांदे, तरस खा जांदे। जगत नूं जलदा देख के, दुखद देख के, अज्ञानता दीआं ठोकरां खांदिआं देख के तरस खा के फिर आ जांदे ने। तन दी अपनी उम्र आउंदी है जिहड़ा मिलदा है उहनां नूं, पर नहीं ज्यादा दिन तक कुछ वंडीए। गुरु नानक नूं दस तनां दा, दस शरीरां दा इस्तेमाल करना पिआ। संत बनाना है, उसे संत नूं सिपाही बनाना है, बड़ा लंबा कम पूरा करिए। मनुख नूं पूरन पुरख बनाना है, पूरा करिए। ये ढाई पौने 300 साल की अवधि, खैर मुख्तसर में अर्ज करा। दूजी श्रेणी मनुखां दी, जप जप के, साधना कर करके, अमृत वेले उठ के, सवेरे शाम सत्संग करके, हर वक्त मन नूं प्रभु पासे ला के, इसे जीवन विच मुक्ति पा ली है। इन्हां नूं कहिंदे ने भगत संत। अवतार उन्हां नूं कहिंदे ने मुक्त ते हो गए सन, फिर आ गए। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए होवेगी। साधना कर करके, जप तप कर करके मुक्त हो गए ने, पहुंचे ये भी उत्थे ही ने जिथे अवतार ने। पर ये दोबारा आणगे के नहीं आणगे, इन्हां दी सोचनी ते मुनसर होवेगा। अजे भगत ने, संत ने, परम आनंद देच ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु बाणी दे नाल नाल भगत बाणी, भगत जो भगवान तक पहुंच गए, प्रभु तक पहुंच गए, ये मुकुत ने, भगत ने, संत ने। सुरनर तिनकी बाणी गावे, कोई न सके मिटाई। जद कोई भगवान तक पहुंच जाता है तो उहदे अंदरों भगवान का गीत संगीत निकलता है, भागवत गीता निकलती है। हर भगत दे बोल भागवत गीता ने, ये भी मर्ज करते हैं गीत ने। नानक भाव जल पार परे जो गावे प्रभ के गीत, किहड़े गीत? जो भगतां दे गीत ने, अमर गीत ने। अगर वो कोई गावे मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त पुरशां दे बोल ने, उन्हां दे बोल ने। ये जिहड़े मुक्त पुरश आउंदे ने, भगत लोग आउंदे ने, इन्हां नूं फिर विद्वानां ने दो हिस्सिआं च वंडिआ। एक ओ जो रोजमर्रा जगत नूं संदेश उपदेश देंदे रहे और उन्हां दे अंदरों गीत संगीत जन्म लैंदा रहा, भावें चौक दे च बैठ के जुतियां ही गणदे ने रविदास, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें खड्डी ते बैठ के सारा दिन कपड़ा बुणदे ने कबीर, लेकिन भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें सारा दिन कपड़िया नूं रंगदे ने, छिमदे ने, नामदे, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी। इन्हां दे गीतां दे च भगवान आउंदा, इन्हां दे बोलां दे च भगवान आउंदा। कुछ ऐसी श्रेणी भगतां दी जिन्हां कोल शैली शब्दावली अक्षरी ज्ञान नहीं आउंदा, प्रभु दा ज्ञान आउंदा।
वो फिर नहीं बोले, नहीं बोलते, चुप रहते हैं। उन्हां दी खामोशी भी कुछ ना कुछ वंडदी रहती है, जैसे खिड़िया होया फुल उहदी खामोशी भी महक वंडदी रहती, सुगंध वंडदी रहती। क्योंकि इस तरह के पुरश बोलते नहीं, कुछ लिखते नहीं, कहते नहीं, तो समाज के जमीन के उत्ते उहदे कदमां दे निशान नहीं बनते। यह भी मैं अर्ज करते, ये भगत दूजी श्रेणी। एक तीजी श्रेणी मैं हुणे अर्ज की है, धार्मिक विद्वान पुरुषां ने मनुखां नूं पंज हिस्सिआं च वंडे ना वंडिआ है, ते हुण गिणती तुसीं अपनी कर लेना, इन्हां पंजां दे च असीं किहड़ी श्रेणी चाहुंदे आ। तीजी श्रेणी परमात्मा ते श्रद्धा भी है ते शक भी है, मन मनदा भी है मन इनकारी भी है। मन उही कुछ मनदा जो मन दे अनुकूल है, मन उसनू इनकार करदा जो मन दे अनुकूल नहीं। श्रद्धा भी है शक भी है। यह श्रेणी सब तो ज्यादा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे करीबन करीबन बहुते इन्हां नाल ही भरे हुए ने। गुस्ताखी श्रद्धा भी है शक भी है। गुरु नू मथा भी टेकना, गुरु की गल भी नहीं मननी, गुरुद्वारे भी आना है गुरु नाल जुड़ना नहीं है। श्रद्धा भी है शक भी है। इनू मैं इस तरह बयान करता हूं, कोई एक कदम अगे चले एक कदम पिछे चले, एक कदम अगे चले एक कदम पिछे, सारा दिन इस तरह चले तो कितने पहुंचेगा, किधरे पहुंचेगा। मेरिया इन अखा ने देखिया 40-40 साल तो जोड़े गुरुद्वारे आ रहे हैं, 40 साल पहले भी क्रोधी सन अज भी क्रोधी ने, 40 साल पहले भी प्रबल लोभ नाल भरे हुए सन अज भी लोभ नाल भरे, 40 साल पहले भी हंकारी सन अज भी हंकारी, 40 साल पहले भी भिकारी सन अज भी भिकारी ने, कुछ भी चले भी बहुत ने, थके भी बहुत ने, टूटे भी बहुत ने, पहुंचे क्यों नहीं। एक कदम अगे एक कदम पिछे, एक कदम अगे एक कदम पिछे। दान पुन भी कर लिया, पाप भी कर लिया, ईमान भी प्रगट किया, बेईमानी भी कर ली, सच भी बोल लिया, झूठ भी बोल लिया, हाथ च गुटका रख के पाठ भी कर लिया, गंदे गीत भी अलाप लिया। श्रद्धा भी है शक भी है, एक कदम अगे एक कदम पिछे। ये तादाद सब तो ज्यादा है, सब तो ज्यादा। इस तादाद दे चां कुछ लोग धार्मिक किरत अपना लेंदे ने, कथा कीर्तन, मौलवी बन गया कोई, फादर बन गया कोई, गुणी ज्ञानी बन गया कोई, पंडित महाराज बन गया। हुण परमात्मा नूं जाणिया ते है नहीं, जाणिया ते कख नहीं, जाणन दी कोशिश पे करदे, समझिया ते कुछ भी नहीं, समझाण दी कोशिश पे करदे, खुद नहीं समझे। अपना ही मन जिस गल नूं नहीं मनदा पिया उही जगत नूं मनाना चाहते हैं। गुरु नानक कहिंदे ने खेड नहीं बनेगी, प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर ले जावे। ये खेड इंज नहीं बनेगी। ये तीजी श्रेणी है, श्रद्धा भी है शक भी है, शक भी है श्रद्धा भी है। इस वास्ते दान पुन भी है, बेईमानी भी है, सेवा भी है, कठोरता भी है, बाणी का जपतप भी है, झूठ बोलना भी है, अनर्थ भी है, श्रद्धा भी है शक भी है। ये तीजी श्रेणी है। चौथी श्रेणी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, ही नहीं। ऐलानिया कहते हैं कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, साडा की गुरुद्वारे नाल मतलब। अजोके नौजवान कई मिलते हैं, मैं तो सुन के हैरान होना, मन अपना चंगा होना चाहिए, की लोड़ गुरुद्वारे जाण दी। जिवें मन का चंगा होना बच्चों का खेल है, खिडौणियां दी खेड है। दिन रात साधन करन वाले विचारे अपने मन नूं शुद्ध नहीं कर पाते। मन चंगा होना चाहिए जी, मन शुद्ध होना चाहिए। इस तों गल स्पष्ट हो गई

नास्तिक साड़ी कोई आस्था नहीं, साड़ा कोई भरोसा नहीं। अजोकी नौजवान पीढ़ी ते यही बहुत ज्यादा सवार है, यह भी मैं जोर। और कम्युनिस्ट कहते ने पता है की आखते हैं, भोजन की लोड़ है, भजन की लोड़ नहीं है, धन की लोड़ है, धर्म की लोड़ नहीं है, पानी चाहिए स्वच्छ, गुरबाणी नू की करना है। कम्युनिस्ट ऐलानिया कहते हैं और दलील देंदे ने, चार दिन पानी ना मिलिया पंजवें दिन मौत हो जाएगी। सारी जिंदगी भी मैं गुरबाणी ना पढ़ा तो की होना है, की घटता है, कुछ भी नहीं घटता, इंज कहते हैं। जेब दे च धन नहीं है तो जमीन ते चार कदम चलना औखा है, हिरदे दे च धर्म नहीं है सारी दुनिया भ्रमण करके आ जाओ, इंज कहते हैं। पेट दे च भोजन नहीं है, जीवना बड़ा औखा है, काम करना बड़ा औखा है, जबान ने भजन नहीं किया की घट गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लमकावे ना समा हो गया, मैं अर्ज करा, भोजन ना मिलिया तन मरेगा, भजन ना किया जमीर मरेगी, इंसानियत मरेगी, मनुखता मरेगी। ये जीवेगा ते सही जीवदा ते रहेगा, पशुओं की तरह जीवेगा। करतूत पशु की मानस जा, लोक पचारा करे दिन रात। पानी ना मिलिया तन मरेगा, वाह कई मरेगा। गुरबाणी का जाप ना किया मनुखता मर जाएगी, अखां जीवां बिसरे मर, मनुखता मर जाती, इंसानियत मर जाती है, आनंद मर जाता है, रस मर जाता है, ज्ञान मर जाता है, निर्वैरता मर जाती है, दया मर जाती है, अंदर कठोरता रह जाती है। हो ही नहीं सकता ईश्वर नूं भुला के कोई कोमल हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई ईमानदार हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई परोपकारी हो जाए, ईश्वर नूं भुला के कोई सुखी हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारे दुख उसनों चमणगे, परमेश्वर ते उन्या व्यापन सभे रो। एक चौथी श्रेणी, लोड़ ही नहीं है, नास्तिक साड़ी कोई आस्था नहीं है। एक पंजवी श्रेणी, इतनी बेखबर, ईश्वर ऐसा कोई विषय ही नहीं है, इसते शक कीता जाए या श्रद्धा कीती जाए, इदे बारे सोचिया जाए, इते कोई ऐसा विषय ही नहीं है। पंजवी श्रेणी जिन्होंने भूल के कभी इस संबंध सोचिया भी नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आया, ये पंज श्रेणियां हैं। तो खुद ब मुनसफ शुद्ध, अपना मुनसफ आप बनना है, अपनी जजमेंट आप करनी है, असी किस श्रेणी चाहते हैं, असी कैरी क्लास के विद्यार्थी, किस क्लास ने, चूंकि फैसला हर मनुख ने आप करना है। दूजा की जाने, थानू की पता मेरा मन दे की चलता रहा, मैनू की पता थोड़े मन दे की चलता रहा। तो खुद ब मुनसफ शब्द, अपना मुनसफ आप बनना, अपना फैसला आप करना, साहब रहमत करना। असी इस दूजी श्रेणी च आईए, धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोलों अपना के, धन गुरु हर राय साहब जी महाराज के प्रकाश उत्सव को मना के, जिस तरह भाई गौंदे ते बख्शिशा हुई, ए गुरु हर राय साहब अज साड़िया भी झोलियां भरना तेरे दर तो खाली ना जाए, श्रद्धा नाल भर जाए साड़ी झोली, रब्बी विश्वास नाल भर जाए साड़ी झोली, जो शक शुभे अंदर ने, हे धन गुरु हर राय साहब इसनों कढ़ो, ऐसा भरोसा पैदा करो कि एकदम ख्याल आ जाए, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। बाकी विचारा मैं थोड़े सामने आज शाम को रखांगा, ये फैसला तुसी आप कर लेना जिस श्रेणी च हो। जिन्ने चिर तक इस दूजी श्रेणी च नहीं आए, मुक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, भगत नहीं बने, उन्ने चिर तक खेड नहीं बनेगी। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। भगत मुक्त हो जाता है एक दिन, तन का अंत हो जाता है, फिर इसकी मर्जी आती है।

0: मैं फिर जन्म लेना है कि नहीं, क्योंकि मुकत है कि जो मुकत है दी मर्जी नहीं वासना इसनों जन्म देवेगी और ये भटकेगा अहंकार इसनों बार बार जन्म देवेगा। हमें यही बंधना फिर फिर जोनी पाए मुड़ मुड़ जोनिया दे भटकता रहेगा। साहेब रहमत करन बख्शिश करन प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुकत सौ कहावे। असी जीवन मुकत बन के जीवन का लाहा खट सकीए जीवन नु आनंदित बना सकीए संसार दे आण दा मनोरथ जो है वो प्राप्त कर सकीए। इतनी सेवा प्रवान सारेयां दा बार बार धन्यवाद। बोल चौधरी शमा वाहिगुरु।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Bod of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Bod, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBodGroup.com.

जे किसी घर न्याणा हो कदी किसे क्या भी बधाई होवे तुहाडे घर कल भाणा वापर गया तुहाडे घर न्याणा होया भाणा वापर गया क्योंकि हुक्म ते भाणा लफ्ज असी दुखांत नूं जोड़िया है। गुरु ने पहलियां पौड़ियां च कहा नहीं हो सिखा हुक्म शब्द बड़ा वड्डा है ये सुख भी है ते इहदे विच दुख भी है। फिर बेनती हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई करे सो चंगा मन में बेनती करें हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईए। मेरी बेनती तो सारे पौड़ी नाल पढ़ी पर ध्यान दिया जी अर्थां वाल हुक्म विच ही वडियाई है हुक्म विच ही अपमान है हुक्म विच ही मौत है हुक्म विच ही जन्म है हुक्म विच ही सुख है हुक्म विच ही दुख है पर इस हुक्म की समझ तां पैंदी जदन बंदे की ईगो मरेगी क्योंकि ईगो नहीं समझ देंदी ईगो कहिंदी मैं करन वाला। फिर पौड़ी पढ़ लिए हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईए हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्म जे बुझे ता खौमे कहे ना कोय ओ खौमे च नहीं कहिंदा। मैं फिर बेनती करांगा जी इस गल नूं मैं ज्यादा जोर सिर्फ इस ते देना है के करे चु सो चंगा मान दुई गणत लाखे जो कर रहा बस उन स्वीकार कर ले। अक्सर असी जो ये मैं हूँ भाणा शब्द वरते है तो ये आनंद साहब रोज़ पढ़ने जी जा तिस भाणा तो जमया भाणा वापरिया तो बंदे का जन्म होया परिवार भला पाया। एक असी घटना अक्सर सुनाने भाई भिखारी जी की मैं साखी नहीं सिर मैं तीन गल्लां चो कर रही ने कि तस्लीम कर लेना भी जो हो रहा मैं मना गा अगे असी बाणी चो देखांगे क्योंकि जो गुरु जी की ता बाणी दे प्रमाण लई दे ने मता कोई सोचे शायद अपने कोलो। हुण असी जदों महाराज जी दे सिख बारे पढ़ने भाई भिखारी बारे तो जिहड़ा सिख इहनू मिल गया उहदा नाम दरअसल सी भाई गुरमुख बच्चे का विआह सी आप सब नूं पता है भी जवान पुत्र का विआह कर इन्ना खुशियां खेड़े पर भाई भिखारी जी जिहड़े ने उह तप्पड़ सींदे पए सन ते जदों दूजे दिन व्यांदड़ मुंडा ही जिहदी बरात गई उही मर गया।

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट मत।